جَمَعَ

ولا شفيع لعله

لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9891-8051
1: छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
1: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

عشق میرا پیش پیا عشق میرا

बेपरवाह ही जात खुदा दी हुण बंदे बेपरवाह भी नहीं।

अखियां चटक पटक विच लग रही ते पै गया कीड़िया गलिया अखियां से मादाम सुहाव वल याद वध्यान तेरिया गढ़िया गुलाम फरीदा असा खुश क्यों न वसू हिन नाल सजन ते दे गढ़िया उहा तार

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे न्यूज
1: मुखालफतें होती हैं, लेकिन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आजाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है और उसके अंदर इस तरह के जरासीम मगर दाखिल हो जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये हारना जीतना तो किस्मत की बात होती है और फिर उनकी शिकायतें जो हैं वो मेरे ख्याल है किसी वक्त बैठ के जरूर सुनेंगे।
2: सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जे। कुछ शिकायतू असाते पहुंतियों जैते अफसोस थियो। उम्मीद न हुई तो पीपल्स पार्टी तरफा को शिकायत जो मौको मिलंद। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग डेखारे रही है, मुल्क तरक्की कर रो है। मरीय में पार्टी इजलास के खिताब कंदे नवाज शरीफ चो तो आजाद कश्मीर चूंडन के बिन मरहलन में नू लीग कामयाबी हासिल कई है। जड़ी तरह पंजाब तब्दील थी रो है, अड़ी तरह आजाद कश्मीर के भी तब्दील थियण घुर्जे। नू लीग डिलीवर न कर तो इतना जो आवाम नाराज थी। नवाज लीग तारीखी दांधली करे एक खैराती मैंडेट हासिल कयो। आजाद कश्मीर की चूंडन के नतीजन के फॉर्म 47+ के नाले से याद रखो वो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन नवाज लीग के सदर मियां नवाज शरीफ के बयान से रद अमल डींदे चयो तो आवाम 2024 में मुस्लिम लीग नून के रद्द कयो 26 में भी पैं फैसलो बुधा छो। नवाज शरीफ जो बयान अफसोसनाक है। डोरापो दियण का पैर दिसण घुर्जे तो आजाद कश्मीर में सियासी हालतू कड़ी तरह पैदा थियूं।

0: फैक्ट्री ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03008-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03018-65453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03001-380-8347
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: गडियल कौमनि जी सलामती काउंसिल जे 56 मुल्कनि अफ़गान सरज़मीन ते मौजूदु दहशतगर्द गिरोह खे गडियल ख़तरो करार ॾेई छॾियो। गडियल बयान में चयो वियो आहे त तालिबान रिजीम में अफ़गाननि खे इंसानी हक़नि, इमदाद, मैशियत ऐं सलामती बाबति चैलेंजिस आहिनि। इहा सूरतहाल पाड़ेसरी मुल्कनि समेत पूरे ख़िते जे इस्तेहकाम ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो पैदा करे रही आहे। ईरान जे लेबनान ते इसराइली हमलनि जी मज़म्मत ऐं गडि॒यल क़ौमनि ते सख़्त तनक़ीद। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवणु हो त गुज़िरियल राति लेबनान में इसराइली हमलनि ते गडि॒यल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल ख़ामोश रही। ईरान लेबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ा लाइ उन सां गॾु आहे। गुज़िरियल राति लेबनान में इसराइली हमले में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 11 ॼणा शहीद थी विया हुआ ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थिया हुआ। अमरीकी सदर आमना हुरमस बदिरां पंहिंजी सिक्योरिटीअ जो फ़िक्र करे ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती ऐं परडे॒ही पॉलिसी जी कमेटीअ जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ीअ जो ट्रंप जी आमना हुरमस बाबति बयान ते रदि अमल। गुज़िरियल ॾींहुं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त आमना हुरमस खे अमरीकी इलाइक़ो क़रार ॾियणु वञा पियो। बाद में व्हाइट हाउस ट्रंप जे इन बयान खे हिकु मज़ाक क़रार ॾिनो हो। रूस जी राजधानी मॉस्को ते यूक्रेन जो वॾो हमिलो। गुज़िरियल राति मॉस्को ते 600 ड्रोन्स फायर कया विया। रूस जी यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह करण जी दावा। रूसी फ़ौज जा बि यूक्रेन ते बैलिस्टिक ऐं मिज़ाइल हमला। यूक्रेन अख़्तियारनि मूजिबि रूसी हमले सबबि हिकु औरत मारिजी वई ऐं 7 ज़ख़्मी थी पिया।

सिंध असेंबलीअ जे सूबाई तक 30 गंबट ते ज़मीनी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल जारी। पीपल्स पार्टी उमेदवार बैरिस्टर असफंद यारखल ऐं 4 आज़ाद उमेदवार मैदान में लथल। सिंध जे ॿियनि सियासी पार्टियुनि पारां बाइकॉट। PS3 ते 2,54,980 वोटरनि लाइ 102 पोलिंग स्टेशन क़ाइमु कयूं वयूं। 64 पोलिंग स्टेशन इंतिहाई हसास करार ॾिनल। सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम इंतिहाई सख़्तु।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम सुनेंगे सॉन्ग जो कि होगा फैजा अली की आवाज में। अगर किसी को फरमाइशी सॉन्ग है तो मेरे सवाल का जवाब दे दे और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बता दे और मजे मजे के सॉन्ग को एंजॉय करें हमारे साथ। अकेले के लिए क्या सॉन्ग सुनने का मजा जब तक हमारे साथ आप लोग ना सुने भाई। तो यहाँ पर मैं सॉन्ग करूंगी एक प्ले। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सॉन्ग होता है तो मैं अकेले नहीं सुनती, हमेशा आप लोगों के साथ सुनती हूँ, तो आज भी ऐसा ही होने वाला है।

अच्छा फैजल की आवाज में जो इतने सारे सॉन्ग्स हैं और समझ ही नहीं आता बंदा प्ले कौन सा करे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो आज एक इनका न्यू सॉन्ग भी हम लगा लेते हैं। सुना तो ये हम लोगों ने शायद नहीं है या सुना है, खैर मैं तो हमेशा कोई भी न्यू सॉन्ग होता है हमेशा मेरे लिए आप लोगों के साथ ही सुन रही होती हूँ, तो ऐसे ही है आज भी एक सॉन्ग इनका मैंने प्ले किया है तो आपके साथ सुनते हैं जी, इंजॉय करते हैं साथ में, ये सॉन्ग रहेगा मेरे साथ।

0: अगर इंसान पर अगर इंसानों पर गुजरने वाली कैफियत उनके दिल के बजाय उनके माथे पर लिखी होती तो तुम्हें उन लोगों पर रहम आता जिनसे तुम हसद करते हो। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे दिलों का हाल तो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। तो लोग समझ रहे होते हैं कि हर इंसान जो है ना बहुत खुश है, चलो ठीक है वो किसी को तकलीफ नहीं देता होगा, वो खुश भी होगा, लेकिन अंदर से वो उसके हाल क्या है दिल का। आप लोग अगर ये जाना शुरू कर दें तो उससे हसद करने से बेहतर आप पहले ही अपने आप को जो है ना समझा लेंगे कि नहीं यार हम इससे हसद क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अच्छा आपने कोर्स भेजा है नज़ीर को। सो और साथ में कहते हैं सोबत व बलोचिस्तान से वो ज्वाइन करते हैं हमें, तो थैंक यू फॉर नज़ीर को सो कि आपने हमें सोबत व बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन किया। ऐसे आप हमें ज्वाइन करते रहा करें, हर इतवार मेरा और रहता है आपका साथ पूरे पूरे दो घंटे के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक। और जैसा कि अब यहाँ पर टाइम हो जाता है हमारे पास छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, जैसे ही ब्रेक पर जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बातें। जब तक रहिएगा मेरे साथ और रखिएगा अपना ख्याल। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताती जाऊँ कि मेरे जो सवाल थे, सवाल जिसने अभी तक मेरा नहीं सुना, सवाल मैं रिपीट करते जा रही हूँ, देन हम जाएंगे ब्रेक पे। तो सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि आपने मुझे बताना है कि भाई वो ऐसी हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो 2 महीने बाद तब्दील होती है। तो पता लगाइए, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, और नकल तो बिल्कुल नहीं करिएगा, वही बात की अकल भी चाहिए तो वो आप लोगों के पास नहीं है। तो बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी देर में हम आकर देखेंगे। अभी यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास एक छोटा सा शॉक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, ब्रेक पर जाएंगे जैसे वापस आएंगे तो फिर भी हमारे पास 15 मिनट होंगे आपके से जवाब लेने का। तो सही है, अभी चलते हैं ब्रेक पे और चाय शाय पीजिए, सुबह का नाश्ता कीजिए, अकेले अकेले मुझे तो आपने याद ही नहीं किया। तो चलते हैं ब्रेक पे, आते हैं वापस। इट्स 11
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी,
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर आई

0: आप लोग मुझे ही बोल रहे होते हैं कि आपने हमारे पसंद का सॉन्ग नहीं चलाया था, ऐसे कैसे चलाएं भाई, टाइम तो देखें, टाइम के साथ आप लोग मुझे जवाब देंगे तो आपके पसंद का सॉन्ग भी चलेगा और इसके अलावा आप लोगों की आंखें भी खुलेंगी न्यू सॉन्ग के सुनने के बाद। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग समझ रहे होते हैं कि भाई हम लोग तो डर जाएंगे और हमें जो है अगर हमारा जवाब गलत हुआ तो इंसल्ट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप लोग जवाब दें, मैं कोई रीड आउट नहीं कर रही होती ऐसे, आपको पता है ये चीज़। और मैंने आपके लिए रखी एक चीज़ ऐसे है कि ताकि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, अगर आपका जवाब ठीक नहीं होगा तो आपका सॉन्ग प्ले नहीं होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग परेशान हो रहे होते हैं या कुछ है, तो इस चीज़ की तो इस चीज़ में टेंशन होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। तो सवाल इतना आसान था कि भाई सवाल सवाल सवाल बहुत आसान है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें जवाब दे रहे हैं। अच्छा जी, देखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल लशारी हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि विलेज सोनू खान लशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं बाजी सना, सवाल का जवाब है। ओके जी, आपने मुझे सवाल का जवाब तो दे दिया है। इकबाल लशारी, कैसे हैं आप? और आप थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया है। और आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको सॉन्ग कौन सा सुनना है, और क्या पता आपका जवाब ठीक हो तो आपका सॉन्ग हम प्ले करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि मेरे पसंद का सॉन्ग प्ले हो, तो सॉरी, आपने क्या करना है, आप अपना पसंदीदा सॉन्ग का नाम तो बता दें भाई, ताकि मैं आपका सॉन्ग का नाम जो है देखकर उसको प्ले कर सकूं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि जो आपने इतनी मेहनत की है मुझे जवाब दिया है तो वो ठीक है बिल्कुल। तो जाएं और जाके मुझे मेरे अपने पसंद का सॉन्ग का नाम बताएं, ताकि आप भी सुन सकें आपकी पसंदीदा सॉन्ग और हम लोग भी सुन सकें कि आपके फरमाइशी सॉन्ग कौन से हैं। तो क्योंकि जवाब तो आपने हमें दिया है तो हम तो यही चाहेंगे कि आपका जो पसंदीदा सॉन्ग है वो भी हम प्ले करें, तो ऐसे ही है। मेरे पास तो आज इतने सारे सॉन्ग्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, मैंने कहा यार मैंने आपसे करनी, लेकिन एक सवाल आप लोगों से किया है और जिसका जवाब अभी तक आप लोग मुझे दे ही नहीं पाए। एक तो मुझे आप लोगों के पास आने के लिए इतनी जल्दी होती है कि मैं खुद उठने के बाद नाश्ता ही नहीं करती, मैं कहती नहीं यार मैं वहाँ पर जाऊँगी आप लोगों से बातें करूंगी मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है कि यहाँ पर आके भी हम भूखे ही मर रहे होते हैं, आप लोगों से कोई बात नहीं कर पा रहे होते, तो ये चीज़ गलत है भाई, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अब मैं तो इतने न्यू सवाल लेके आती हूँ आप लोगों से सिर्फ इसलिए कि आप मुझे जवाब देंगे, साथ में बात होगी, लेकिन जनाब तो डर रहे होते हैं, तो आज से भाई फिर अकेले सॉन्ग सुनना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ सुनने का फायदा ही क्या जब आप लोग मेरे साथ सुनते ही नहीं है और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी नहीं बताते। सवाल पूछो तो जी डर के बैठे हुए होते हैं कि यार गलत ना हो जाए, अभी से आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाली हूँ उसका जवाब कौन देगा, कैसे देंगे बेटा। सुबह सुबह की ड्राइविंग करते हुए आप लोग एफएम सुन रहे होंगे, यार क्या मजा आ रहा होगा, तो मेरे साथ भी यही है, मैं भी जब सुबह सुबह ड्राइविंग कर रही होती हूँ एफएम लगाती हूँ, अपनी आवाज़ सुनती हूँ और सारे यार जिसकी आवाज़ सुन रही होती हूँ, तो जो मजा आता है ना यार ड्राइविंग का, मंजिल फौरन से आ जाए, हम कहते यार अभी रास्ता लंबा होना चाहिए था, खत्म कैसे हो गया, क्योंकि वो हम लोग एफएम सुन रहे होंगे इसलिए। तो जी आप लोगों के साथ भी यही होता होगा मुझे पता है। और इसके अलावा कि हमारे पास जो फरमाइशी सॉन्ग्स हैं वो बहुत सारे होते जा रहे हैं ऐसे, तो अभी हम प्ले करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं यहाँ पर एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, जाके चाय शाय पिए, मैं भी पीऊँ तो जी, और चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, रहेगा मेरे साथ।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें, बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: खुशखबरी, खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सॉन्ग, और ये जो हमने फरमाइशी सॉन्ग सुना है तो ये सुना था हमने मसरूर अहमद की फरमाइश पे, और यकीन उनका जवाब बिल्कुल ठीक है तो हमने उनका सॉन्ग प्ले किया है। और ऐसे ही आप लोगों से फरमाइश है मेरी, बल्कि गुजारिश है मेरी सारी, कि भाई आप लोग जो है जवाब टाइमली दें ताकि अपने पसंद का सॉन्ग भी सुन सके, हमें भी इंजॉय करवा सके अपना पसंदीदा सॉन्ग का। और इसके अलावा मैं आपको क्या बोलूँ, देखते हैं यहाँ पर हमारे साथ और कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं, ये हम आपको आकर बताएंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं कि हमें SMS कौन करता है। अच्छा जी, सबसे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। अभी भी जिसने न्यू ज्वाइन किया है, जिसको नहीं पता, तो आपने क्या करना है, 888-1PH क्या लिख के विथ योर सिटी नेम और अपने प्यार से नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ आपका जवाब क्या है, अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बता सकते हैं कि भाई ये प्ले करना है। अगर आपका जवाब ठीक है तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो आपने 888-1PH क्या लिखी होती है सिटी नेम और अपने प्यार से नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बताऊं कि अगर आप लोग लाइव फेसबुक पे कमेंट करना चाहते हैं, लाइव फेसबुक को कमेंट करने के लिए आपने फेसबुक को ऑन करना है और जाकर GFM88 का पेज ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको मेरे नाम का फ्लायर दिख जाएगा ऊपर ही फर्स्ट पे विद आरजे सना के साथ, आओ बात करें में शामिल हो जाइएगा आप लोग। वहाँ जाके बिना देर की मेरी आवाज़ सुनने के साथ आपने मेरे पेज को लाइक करना, कमेंट करना है और शेयर करना है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि किसने मेरे पेज को जाके शेयर किया है और मैं यहाँ पर अपने पास उसका नाम सेव कर लेती हूँ। तो बहुत सारे क्वेरीज होते हैं और जो कि हम क्वेश्चंस आप लोगों से कर रहे होते हैं, इसी वजह से कर रहे होते हैं कि हमें, मुझे और आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन मेरे साथ मौजूद है, कौन कौन से सवाल अभी हमारे होने हैं। तो यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, तो एक और सवाल आपके लिए रेडी है और आप लोग भी उसके लिए रेडी हो जाएं कि आप लोगों ने उसका जवाब देना है। तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का, न्यूज़ ब्रेक भी देखना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। तो चलते हैं न्यूज़ ब्रेक की जाने पर, वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बातें और मैं अपना जवाब आपको दे दूंगी जैसे ही हम लोग न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे। तो रखिएगा जब तक अपना बहुत सारा ख्याल और न्यूज़ को सुने ज़रा जनाब, और मैं पूछूंगी कि किसने न्यूज़ सुनी थी, किसने नहीं। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ।
1: सचल की सरमस्त धरती
2: फातिया मेहरान सिंध की एक और
1: पहचान
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

मुल्क बचाइण जो वाहिद तरीक़ो इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिणु आहे, नवां सूबा ठाहिणु गदारी आहे, त इन में इहा ॻाल्हि छो शामिल आहे? नवनि सूबनि जे मुतालबे लाइ एम क्यू एम अॻवान जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो त नवां सूबा मुतालबो न पर वक़्त जी घुर्ज आहिनि। असांजी सूबनि वारी तजवीज़ मां पूरे मुल्क मां आवाज़ उथी रहियो आहे। फारूक सत्तार चयो त मुल्क जी सलामती नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण में आहे। मुस्तफ़ा कमाल जो चवणो हो त पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वीटो कयो, इंतज़ामी यूनिट सां सिंध जा हारी बि बाख़्तियार थींदा।

0: गडियल कौमनि जी सलामती काउंसिल जे 56 मुल्कनि अफ़गान सरज़मीन ते मौजूदु दहशतगर्द गिरोह खे गडियल ख़तरो करार ॾेई छॾियो। गडियल बयान में चयो वियो आहे त तालिबान रजीम में अफ़गाननि खे इंसानी हक़नि, इमदाद, मैशियत ऐं सलामती बाबति चैलेंजिस आहिनि। इहा सूरतहाल पाड़ेसरी मुल्कनि समेत पूरे खिते जे इस्तेहकाम ऐं सलामती लाइ ख़तरो पैदा करे रही आहे। ईरान जे लबनान ते इसराइली हमलनि जी मज़म्मत ऐं गॾियल क़ौमनि ते सख़्त तनक़ीद। ईरानी परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त गुज़िरियल राति लबनान में इसराइली हमलनि ते गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल ख़ामोश रही। ईरान लबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ा लाइ उन सां गॾु आहे। गुज़िरियल राति लबनान में इसराइली हमले में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 11 ॼणा शहीद ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थिया हुआ। अमरीकी सदर आमना हुरमस बदिरां पंहिंजी सिक्योरिटीअ जो फ़िक्र करे ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती ऐं परडेही पॉलिसी जे कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो ट्रंप जे आमना हुरमस बाबति बयान ते रद अमल। गुज़िरियल ॾींहुं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त आमना हुरमस खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियणु वञा पियो। बाद में व्हाइट हाउस ट्रंप जे इन बयान खे हिकु मज़ाक करार ॾिनो हो। रूस जी राजधानी मॉस्को ते यूक्रेन जो वॾो हमिलो। गुज़िरियल राति मॉस्को ते 600 ड्रोन्स फायर कया विया। रूस जे यूक्रेन ड्रोन्स तबाह करण जी दावा। रूसी फ़ौज जा बि यूक्रेन ते बैलिस्टिक ऐं मिज़ाइल हमला। यूक्रेन अख़्तियारनि मूजिबि रूसी हमले सबबि हिकु औरत मारिजी वई ऐं 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। PS3 कंबट ते ज़मीनी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल जारी। पीपल्स पार्टी उमेदवार बैरिस्टर असफंद यार खल ऐं 4 आज़ाद उमेदवार मैदान में लथल। सिंध जे ॿियनि सियासी पार्टियुनि पारां बि बाइकॉट। PS3 ते 2,54,980 वोटर लाइ 162 पोलिंग स्टेशन क़ाइमु। 64 पोलिंग स्टेशन इंतिहाई हसास करार ॾिनल। सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम बि सख़्त रखिया विया। ऐं अमरीका जो चीन ते वापारी टेरिफ खां बचण लाइ धोखो ॾियण जो इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस पारां रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि चीनी शयूं भारत ऐं इसराइल समेत 40 मुल्कनि खां थींदे अमरीका आंदी वञनि थियूं। लेबल बि तब्दील कयो वञे थो। अंदाज़े मूजिबि 40 अरब खां 300 अरब डॉलर्स जी गैरक़ानूनी सप्लाई कई वञे थी। रिपोर्ट में अमरीका खे सालियानो 26 अरब डॉलर्स नुक़सान थियण जी दावा। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस जी रिपोर्ट सोशल मीडिया ते शेयर करे छॾियो। चीन पारां बि इल्ज़ाम जी तरदीद।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300338569।

ये भी एक बस में एक सॉन्ग बना हुआ थी, बड़ा अच्छा है, तो देसंदा राजा, तो सुनते हैं और सॉन्ग को और करते हैं साथ में फिर से एक और सॉन्ग एंजॉय।

सुन रही होती हूँ, फरमाइशी हवा भी आप लोगों के साथ सुन रही होती हूँ मैं, तो ऐसे ये है और मुझे अच्छा सा फील हो रहा होता है कि कोई भी एक नई चीज़ हो तो आप लोग के साथ सुननी होती है मैंने। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वसीम हमारे साथ मौजूद हैं और ये कहाँ से मौजूद है मुझे नहीं पता, बस कहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और आपके हमेशा शो का इंतजार रहता है और सलाम और वालेकुम सलाम। वसीम, कहाँ से आप मुझे ज्वाइन करते हैं ज़रूर बताया करें ताकि मुझे सुनने वालों को पता चल सके कि आपने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया है। तो इससे ये होता है कि भाई सुनने वाले भी परेशान नहीं होते हैं और मैं भी परेशान नहीं होती है, भाई ये कौन है भाई जो मुझे ज्वाइन जैसे मुझे किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास ढेरों लाइंस लगी हुई हैं मजे मजे के सॉन्ग्स की, तो आप सुनेंगे बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से सॉन्ग, क्योंकि दो हफ्ते मैं आपके पास नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं थी, तो क्यों ना मैं आज आपके साथ मजे मजे के सॉन्ग इन्जॉय करूँ और तबियत को मतलब बंदा वैसे ही ठीक कर लेता है, तो ऐसा ही है जी।

अच्छा, इसके बाद मैं सॉन्ग चलाऊंगी जो कि अपनी पसंद का होगा मेरी, और इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई एक फरमाइश करे सॉन्ग की, जो कि मैं उनकी फरमाइश पे एक सॉन्ग चलाऊं. अभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी पसंद का एक सॉन्ग चलाऊं फैज़ अली की आवाज़ में, शीशे का दिल, क्योंकि मतलब एक ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनने का दिल चाह रहा होता है, ऐसे सुबह सुबह का टाइम है, तो क्यों ना कोई अच्छे अच्छे उधम उधम वाले सॉन्ग सुने आपके साथ और आप लोग भी मेरे साथ, क्योंकि जाहिर सी वाले साथ में. और जैसा कि आपको पता है, जिसने जब भी ज्वाइन किया है मेरा शो, जिसने मेरा सवाल नहीं सुन पाया था, खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक सवाल था यार, मैं सवाल आप लोगों से क्यों पूछूं जब आप लोग मुझे जवाब ही नहीं दे रहे होते, नाराज कर देते हैं, आप लोग मनाते भी नहीं हो कि यार ठीक है हम लोग मैडम को जवाब दे दें, आरजे को जवाब दे दें, लेकिन नहीं, आप लोग को समझ होती है कि भाई पता नहीं क्या है और हम लोग जवाब देंगे गलत ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग कम से कम कमेंट करने की लिस्ट में तो शामिल हो जाया करें, आप लोगों से तो वो भी नहीं हुआ चाहता, मैं क्या ही आप लोगों को बोलूँ.

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग फैजल अली की आवाज में सॉन्ग शीशे का दा दिल मेरा। तो जी अब क्या करें जब टूट गया और लेकिन आप लोगों

0: आपके दिल तो सलामत है ना भाई, ये तो बता दें। और उसके अलावा ये बताएं कि कौन सा सॉन्ग आपने मेरे साथ आज सुने हैं, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे, कौन सा सॉन्ग की फरमाइश करना चाहेंगे। तो चलें ठीक है, अभी कोई सवाल नहीं है, कोई आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग मुझे वैसे पसंदीदा सॉन्ग बता दें आज की ऑफर आपके पास बार बार नहीं मिलेगी जो मैंने आज आपको ऑफर दी है। चलें बिना सॉन्ग बिना क्वेश्चन के आपको इस सॉन्ग का नाम बता दें जी, तो कोई सेगमेंट विन करने वाला कोई चक्कर नहीं होगा, अपने पसंद का सॉन्ग बता दें। और आज सुने आज़ादी के दिन, तो अपनी मर्जी के सॉन्ग। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर टाइम हो जाता है वहाँ पर एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, जैसे ही जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं जैसे ही ब्रेक पर जाती हूँ और वैसे ही वापस हम लोग आ जाते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, तो अभी भी सेम ऐसे ही होने वाला है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर हम एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और टाइम हो जाता है टाइम चेक का, तो वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बातें। रहिएगा मेरे साथ, चाय का उठाएं कप और अकेले अकेले एंजॉय करें चाय को। इट्स 12:30।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर लोगों तक पहुँचाना, लेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
7: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजों को इलाज कंदा, हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पेंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: सबसे की सर
1: है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

नहीं कोई भी सॉन्ग. अभी आप खुद बताइए, इतना आपने सिर्फ 10 मिनट बचे हैं हमारे टाटा बाई का ब्रेक करने का टाइम हो गया है और अभी आप कह रहे हैं कि मैं आपको पसंद सॉन्ग प्ले करूं. कैसे करूंगी जनाब, और इतने सारे सॉन्ग मेरे पास मौजूद हैं और अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि आपने मेरा सॉन्ग प्ले नहीं किया. जी बिल्कुल टंगी शॉर्टेज की, लेकिन अभी भी हम कोशिश करेंगे अगर आप सॉन्ग प्ले कर सकें. और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये टाइम होता है एक टाटा बाई करने का, लेकिन जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूं, आज हमने आपको बहुत सारे सॉन्ग सुनाए हैं, तो आज एक सॉन्ग डे था मेरी तरफ से भाई. मैं आपको बहुत सारे सॉन्ग सुनाऊंगी जो कि मैं समझो कि 2 हफ्ते वाली कसम आज पूरी की थी. लेकिन आप लोग इतने हसीन हैं इतने, और मैं ये चाहूंगी कि अभी हम एक और सॉन्ग सुने, वो भी इसी तरीके का, कि आप कितने हसीन हैं. साहिर अली बका के सॉन्ग है जो कि हमेशा मैं, ये सॉन्ग भी आपके साथ ही मैंने सुना हुआ है, तो कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं होता. तो आज मैंने आपको सिर्फ सॉन्ग इसलिए सुनाया तैयार कि आपने मुझे कोई मेरे सवाल का जवाब तो देना ही नहीं था, ना ही आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया था, तो क्यों ना मैं आप लोगों को सॉन्ग ही सुना दूं. तो यहाँ पर एक और सॉन्ग है मेरे पास, लेकिन उस सॉन्ग को प्ले करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये टाइम होता है हमारे पास एक अल्लाह हाफिज़ करने का, टाटा बाय करने का. तो क्योंकि मिलेंगे फिर हम एक अगले इतवार को एक अगले शो में, तो जब तक आपने वैसे ही रखना अपना बहुत सारा ख्याल है, और मुझे भी दुआ में याद रखना है, मेरी भी दुआ में आप लोग हमेशा रहते हैं मौजूद. इसके बाद हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की जानिब, तो देन हमारा टाटा बाय करने का टाइम हो जाएगा. तो जी यहाँ पर सॉन्ग करते हैं हम प्ले और करते हैं सॉन्ग को भी इन्जॉय. मिलेंगे फिर एक अगले इतवार को एक नए शो में एक नए सवाल के साथ, तो अपने दिमाग को रखिएगा हाजिर नाजिर, और टाइम मुझे ज्वाइन कर लिया करें, टाइम मुझे मेरे सवाल का जवाब भी दिया करें अपने पसंदीदा सॉन्ग के नाम के साथ, ताकि मैं आपका जवाब देखने के बाद आपका सॉन्ग प्ले भी कर दूं और टाइम भी हमारे पास कवर हो जाए. लेकिन आप लोग थोड़ा देर कर रहे होते हैं, तो जी

0: मोरू, नौशहरो, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फोर्सेस खारान के इलाके लुजी में ऑपरेशन कयो। कार्रवाई दौरान फितना खुआरे के 7 दहशतगर्दन के मारे वयो। गडल कौमन की सलामती काउंसिल के 56 मुल्क अफगान सरजमीन से मौजूद दहशतगर्द गिरोह के गडल खतरो करार दे छो। गडल बयान में तालिबान रजीम में अफगान के इंसानी हकन, इमदाद, मैशत, सलामती बाबत चैलेंजेस हैं। यह सूरत हाल पाड़ेसरी मुल्क समेत पूरे खिते के इस्तेहकाम में सलामती लाए खतरो पैदा कर रही है। मुल्क बचाने जो वाहिद तरीको इंतजामी यूनिट ठाण है, नवा सूबा ठाण गदारी है, तो आइन में यह गाल छो शामिल है। नवन सूबन के मुतालबे ला MQM अगवानन गडल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो तो नवा सूबा मुतालबो न पर वक्त की घुर्ज है। असांजी सूबन वाली तजवीज़ में पूरी मुल्क में आवाज़ उथी रो है। फारूक सत्तार चयो तो मुल्क की सलामती नवा इंतजामी यूनिट्स ठाण में है। मुस्तफा कमाल चयो तो पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वीटो कयो, इंतजामी यूनिट से सिंध जहारी बेबाख्तियार थींदा।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 0301-399-2836।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 जी गडियल चटाभेटी इम्तिहान खिलाफ उम्मीदवारनि जे एहतजाज बावजूद नतीजा जारी करे छॾिया। कामयाबी हासिल कंदड़ 70 उम्मीदवारनि मां रुॻो 21 उम्मीदवार इंटरव्यू में कामयाब। बशीर अहमद 80 मार्कू खणी पहिरीं नंबर ते रहियो। मोहम्मद अवेस खान 765 मार्कू खणी ॿिए ऐं हैदर अली पीरज़ादो 760 मार्कू खणी टे नंबर ते रहियो। ज़ैन रशीद चन्ना 6 पोज़ीशन माणे असिस्टेंट कमिश्नर बणिजी वियो। 7 नंबर ते वकास तारिक बाजारी जो नालो बि शामिल। नवाबशाह में जूनियर साइंस टीचर्स के उम्मीदवार जो ऑफर आर्डर न मिलने खिलाफ एहतजाज। टेस्ट में 50% मार्कू खड़ंदड़ उम्मीदवार प्रेस क्लब आदो एहतजाज कर। उम्मीदवार तो उस्ताद की भर्ती लाए पासिंग मार्कू 40% रखी हुई, असा 50% रखी नाइंसाफी कई हुई है।

0: पीएसटी गंबर ते जमीनी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल जारी। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार बैरिस्टर असफंद यार खल ऐं चार आज़ाद उम्मीदवार मैदान में लथल। सिंध जे ॿियनि सियासी पार्टियुनि पारां बाइकाट। पीएसटी ते 254,980 वोटर लाइ 162 पोलिंग स्टेशन क़ाइम। 64 पोलिंग स्टेशन इंतिहाई हसास करार। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460-1000।

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

वाहिद तरीक़ो इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिणु आहे, नवां सूबा ठाहिणु गद्दारी आहे त आइन में इहा ॻाल्हि छो शामिल आहे? नवनि सूबनि जे मुतालबे लाइ एम क्यू एम अॻवाननि जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़ालिद मकबूर सिद्दीकी चयो त नवां सूबा मुतालबो न पर वक़्त जी घुर्ज आहिनि। असांजी सूबनि वारी तजवीज़ मां पूरी मुल्क मां आवाज़ उथी रहियो आहे। सिंध मां लॾे वियल हिंदुनि जूं 60% ज़मीनूं असांजूं आहिनि, सिंधियुनि जी महिरबानी जो ॾींहुं बि मल्हाईंदासीं। फारूक सत्तार चयो त मुल्क जी सलामती नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण में आहे। मुस्तफ़ा कमाल चयो त पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वीटो कयो, इंतज़ामी यूनिट सां सिंध जा हारी बि आज़ादु थींदा। सिंध जे माण्हुनि जी हालत बदतरीन आहे, बहराड़ी में जिते कुता पाणी पीअनि था, औरतूं उतां पाणी भरण ते मजबूर आहिनि।

क़यामत जी निशानी आहे जो सिंध में रत जी रांदि खेॾंदड़नि खे सिंध जी फिक्र थी रही आहे। पीपल्स पार्टी अॻवान क़ादिर मंदोखेल जो MQM अॻवान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रदि अमल। पीपल्स पार्टी अॻवान क़ादिर मंदोखेल चयो त का बि सियासी पार्टी पंहिंजे मफ़ादनि लाइ सिंध जी वहदत खे निशानो नथी बणाए सघे। सिंध जो अवाम अॻी अहिड़नि नारनि खे दफ़न करे नफ़रत ऐं तक़सीम जी सियासत रदि करे चुको। जेके माण्हू पंहिंजी तक मां काउंसलर बि नथा थी सघनि, उहे वरी सिंध जे अवाम जो फिक्र करे रहिया आहिनि। उन्हनि खे कराची जे माण्हुनि सां नाहे रहणो त सिंध बलोचिस्तान सरहद ते वञी रहनि।

0: गडियल कौमनि जी सलामती काउंसिल जे 56 मुल्कनि अफ़गान सरज़मीन ते मौजूदु दहशतगर्द गिरोह खे गडियल ख़तरो करार ॾेई छॾियो। गडियल बयान में चयो वियो आहे त तालिबान रिजीम में अफ़गाननि खे इंसानी हक़नि, इमदाद, मुईशियत ऐं सलामती बाबति चैलेंजिस आहिनि। इहा सूरतहाल पाड़ेसरी मुल्कनि समेत पूरे खिते जे इस्तेहकाम ऐं सलामती लाइ ख़तरो पैदा करे रही आहे। ईरान जे लबनान ते इसराइली हमलनि जी मज़म्मत ऐं गडि॒यल क़ौमनि ते सख़्त तनक़ीद। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त गुज़िरियल राति लबनान में इसराइली हमलनि ते गडि॒यल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल ख़ामोश रही। ईरान लबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ा लाइ उन सां गॾु आहे। गुज़िरियल राति लबनान में इसराइली हमले में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 11 ॼणा शहीद ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थिया हुआ। अमरीकी सदर आबना हुरमज बदिरां पंहिंजी सिक्योरिटी जो फ़िक्र करे ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती ऐं परडेही पॉलिसी जे कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ीअ जो ट्रंप जे आबना हुरमज बाबति बयान ते रदअमल। गुज़िरियल ॾींहुं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त आबना हुरमज खे अमरीकी इलाइक़ो क़रार ॾियणु वञा पियो। बाद में व्हाइट हाउस ट्रंप जे हिन बयान खे हिकु मज़ाक क़रार ॾिनो हो। रूस जी राजधानी मॉस्को ते यूक्रेन जो वॾो हमिलो। गुज़िरियल राति मॉस्को ते 600 ड्रोन्स फायर कया विया। रूस जी यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह करण जी दावा। रूसी फ़ौज जा बि यूक्रेन ते बैलिस्टिक ऐं मेज़ाइल हमला। यूक्रेन अख़्तियारनि मूजिबि रूसी हमले सबबि हिकु औरत मारिजी वई ऐं 7 ज़ख़्मी थी पिया। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ जमात इस्लामी जा धरणा रिथियल। कराची में सिक्योरिटी सख़्त। अहम शाहराहनि ते बि कंटेनर लॻाए अहलकार मुक़ररु कया विया। वज़ीर आला हाउस ॾांहुं वेंदड़ रस्ता आम ट्रैफ़िक लाइ बंदि। मेट्रोपोल, PIDC, प्रेस क्लब ऐं ॿियनि अहम शाहराहनि ते बि कंटेनर लॻाया विया। जमात इस्लामी कराची जे अमीर मोहनम ज़फ़र चयो आहे त अॼु चइनि सूबाई गादी वारनि शहरनि में धरणा हया पिया वञनि। गुज़िरियल ॿिनि सालनि दौरान पेट्रोलियम लेवीअ जी मद में 347 अरब रुपया इज़ाफ़ी वसूल कया विया। पेट्रोलियम लेवी अमले तौर ते भत्तो टैक्स आहे। 13 खरब रुपया वसूल कया आहिनि, पर उहा रक़म मुक़ररु कयल टारगेट खां घटि आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 जी गॾियल चटाभेटी इम्तिहान ख़िलाफ़ उमेदवारनि जे एहतजाज बावजूद नतीजा जारी करे छॾिया। कामयाबी हासिलु कंदड़ 70 उमेदवारनि मां रुॻो 21 उमेदवार इंटरव्यू में कामयाबु। बशीर अहमद 800 मार्कूं खणी पहिरें नंबर ते रहियो। मोहम्मद अवेस खान 765 मार्कूं खणी ॿिए ऐं हैदर पीरज़ादो 760 मार्कूं खणी टे नंबर ते रहियो। ज़ैन रशीद चना 6 पोज़ीशन माणे असिस्टेंट कमिश्नर बणिजी वियो। 7 नंबर ते वकास तारिक बाजारी जो नालो बि शामिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: ऐं बायोलॉजी जूं लेबोरेटरियूं, ऑडियो ऐं विजुअल लेक्चर सिस्टम जी सहूलियत, केमेस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, रियाज़ी ऐं इंग्लिश ते ख़ुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट ज़रिए मेडिकल ऐं इंजीनियरिंग में क़ाबिले तहसीन नतीजा, रांदियुनि जो मैदान ऐं उते मुनक़िद थींदड़ मुक़ाबला, तहरीर, तक़रीर ऐं ज़हनी आज़माइश जा मुक़ाबला, पंहिंजे अखियुनि जे नूर, नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो। वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण, मैनेजिंग डायरेक्टर, मज़हर स्कूल सिस्टम। कॉन्टेक्ट नंबर 03000002724। निसार अहमद मेमण, प्रिंसिपल, मज़हर स्कूल सिस्टम, मेहरापुर। कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: हम आए थे और अपने हिस्से का पाकिस्तान, अपने हिस्से का सिंध लाए थे, जिसको मतरू का सिंध कहा जाता है। जनाब सिंध की जमीनों का 60% हिंदुओं का था, जो उन्होंने हमारी जाके ले ली है वहां। वो मतरू का सिंध, वो 60% जमीनें हिजरत करने वालों की थी।
1: आज मुल्क चलाने वालों को ये अंदाजा हो गया है कि मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद तरीकेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। तो नाराज हमसे ना हो लोग, नाराज उनसे हो जो ये जो अगर नाराज हो सकते हैं तो वहां पर नाराजगी जाहिर करें।
2: पाकिस्तान की बका और सालमियत, अब पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स के कयाम के बगैर नामुमकिन है।
3: मुल्क बचाइण जो वाहिद तरीको इंतजामी यूनिट्स ठाहिण आहे। नवां सूबा ठाहिण गदारी आहे त आइन में इहा ॻाल्हि छो शामिल आहे? नवनि सूबनि जे मुतालबे लाइ MQM अॻवाननि जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़ालिद मकबूर सिद्दीकी चयो त नवां सूबा मुतालबो न पर वक़्त जी घुर्ज आहिनि। असांजी सूबनि वारी तजवीज़ मां पूरे मुल्क मां आवाज़ उथी रहियो आहे। सिंध मां लॾे वियल हिंदुनि जूं 60% ज़मीनूं असांजूं आहिनि। सिंधियुनि जी महिरबानी जो ॾींहुं बि मल्हाईंदासीं। फारूक सत्तार चयो त मुल्क जी सलामती नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण में आहे। मुस्तफ़ा कमाल जो चवणो हो त पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वीटो कयो, इंतज़ामी यूनिट सां सिंध जा हारिब आज़ादु थींदा। सिंध जी माण्हुनि जी हालत बदतरीन आहे। क़यामत जी निशानी आहे जो सिंध में रत जी रांदि खेॾंदड़नि खे सिंध जी फिक्र थी रही आहे। पीपल्स पार्टी अॻवान क़ादिर मंदो खे MQM अॻवान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रद अमल ॾींदे चयो त का बि सियासी पार्टी पंहिंजे मफ़ादनि लाइ सिंध जी वहदत खे निशानो नथी बणाए सघे। सिंध जो अवाम अॻी अहिड़नि नारनि खे दफ़न करे नफ़रत ऐं तक़सीम जी सियासत रद्द करे चुको आहे। जेके माण्हू पंहिंजे तक मां काउंसलर बि नथा थी सघनि, उहे वरी सिंध जे अवाम जो फिक्र करे रहिया आहिनि। बलोचिस्तान जे ज़िले खारान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कामयाबु ऑपरेशन। 7 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि रदल फितना 3 तहत सिक्योरिटी फोर्सिस खारान जे इलाइक़े लुजी में ऑपरेशन कयो। कार्रवाई दौरान फितना अख़बार जे 7 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। सदर वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर पारां सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश। बहादुर बलोचन जो दहशतगर्दी सां को बि तालुक न आहे। फितना हिंदुस्तान जा दहशतगर्द जबलनि में लिकी वेठल आहिनि, जितां अची आम शहरनि औरतुनि ऐं ॿारनि खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। कोटा में बलोचिस्तान असेंबली जे डिप्टी स्पीकर, सूबाई वज़ीरनि ऐं ॿियनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद बलोच, राहिला हमीद ऐं ॿियनि चयो त बलोचिस्तान में कंहिंखे बि अमन अमान ख़राब करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्द बलोचिस्तान ऐं बलोच अवाम जा ख़ैर ख्वाह नथा थी सघनि। घरनि में घिड़ी औरतुनि खे क़तल करणु कहिड़ी बलोच रवायत आहे? नौशकी में BLA जे दहशतगर्दनि ॿिनि औरतुनि खे शहीद कयो, कंहिंजो बि मज़मती बयान न आयो आहे। गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे 56 मुल्कनि अफ़गान सरज़मीन ते मौजूदु दहशतगर्द गिरोह खे गॾियल तौरु ख़तरो करार ॾेई छॾियो। गॾियल बयान में चयो वियो आहे त तालिबान रजीम में अफ़गाननि खे इंसानी हक़नि, इमदाद, मईशियत ऐं सलामती बाबति चैलेंजिस आहिनि। इहा सूरतहाल पाड़ेसरी मुल्कनि समेत पूरे खिते जे इस्तेहकाम ऐं सलामती लाइ ख़तरो पैदा करे रही आहे। ईरान जी लबनान ते इसराइली हमलनि जी मज़म्मत ऐं गॾियल क़ौमनि ते सख़्त तनक़ीद। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त गुज़िरियल राति लबनान में इसराइली हमलनि ते गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल ख़ामोश रही। ईरान लबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ा लाइ हुन सां गॾु आहे। गुज़िरियल राति लबनान में इसराइली हमले में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 11 ॼणा शहीद थी विया हुआ, केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया हुआ। अमरीकी सदर अबनाए हुरमज़ बदिरां पंहिंजी सिक्योरिटी जो फ़िक्र करे ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती ऐं परॾेही पॉलिसी जे कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ीअ जो ट्रंप जे अबनाए हुरमज़ बाबति ॾिनल बयान ते रदि अमल। गुज़िरियल ॾींहुं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अबनाए हुरमज़ खे अमरीकी इलाइक़ो क़रार ॾियणु वञा पियो। बाद में व्हाइट हाउस ट्रंप जी हिन ॻाल्हि खे मज़ाक करार ॾिनो हो। रूस जी राजधानी मॉस्को ते यूक्रेन जो वॾो हमिलो। गुज़िरियल राति मॉस्को ते 600 ड्रोन्स फायर कया विया। रूस जी यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह करण जी बिता हुआ। रूसी फ़ौज जा बि यूक्रेन ते बैलिस्टिक ऐं मिज़ाइल हमला। हिकु औरत मारिजी वई, 7 ज़ख़्मी थी पिया। कराचीअ में रेंजर्स ऐं CTD जी गॾियल कार्रवाई। जेकब लाइन मां फितना ख़्वारिज सां लाॻापियल दहशतगर्द शहज़ाद उर्फ़ ढंगर गिरफ़्तार। रेंजर्स तर्जुमान मूजिब गिरफ़्तार दहशतगर्द जो ताल्लुक फितने ख्वारिज जे मंसूर ग्रुप से है। संदस कब्जे में हथियार ए बारूदी मवाद पिण हथ कयो वियो है। गिरफ़्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ़ माण्हुनि सां राबतो करे खेनि फितने ख्वारिज लाइ माहवार बुनियाद ते फंडिंग करण ते राज़ी कंदो हो। गिरफ़्तार दहशतगर्द पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि ख़िलाफ़ जमात इस्लामी जा धरणा रिथियल। कराची में सिक्योरिटी इंतज़ाम सख़्त। अहम शाहराहनि ते कंटेनर लॻाए अहलकार मुक़ररु कया विया। वज़ीर आला हाउस ॾांहुं वेंदड़ रस्ता आम ट्रैफ़िक लाइ बंदि। मेट्रोपोल PIDC प्रेस क्लब ऐं ॿियनि अहम शाहराहनि ते बि कंटेनर लॻाया विया। जमात इस्लामी कराची जे अमीर मोनम ज़फ़र चयो आहे त चइनी सूबाई गादी वारनि शहरनि में धरणा हया पिया वञनि।

0: सिंध असेंबली के तक पीएसटी गंबर से जमनी चूंड लाए पोलिंग जो अमल जारी। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार बैरिस्टर असपंद यार खरल और चार आजाद उम्मीदवार मैदान में लथल। सिंध के बेन सियासी पार्टियों पारा बाइकॉट। पीएसटी से 2,54,980 वोटर 102 पोलिंग स्टेशन कायम। 64 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिनल। सिक्योरिटी का इंतजाम सख्त। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 की गडियल चटाभेटी इम्तिहान खिलाफ उम्मीदवार के एहतजाज बावजूद नतीजा जारी कर छड़ा। कामयाबी हासिल कंदड़ 70 उम्मीदवार में रुगो 21 उम्मीदवार कामयाब। बशीर अहमद 800 मार्कू खी पे नंबर से रो। मोहम्मद अवेस खान 756 मार्कू खी बे। हैदर अली पीरजादो 760 मार्कू खी टे नंबर से रो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दें नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
9: बेवफा चांडिया कंबर वारा, तू साका तो पंजो शहर छदी, तो मुसा

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन, 03013808743।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जी एफएम 94।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अच्छा शुरू कई भैया है उन बाबत पूछल सवाल जो आईनी हक्का है। ब्रेकिंग न्यूज आ है।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
4: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
5: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385699।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8151।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई
4: 0301-2196-8151।

0: 301-380-8743।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: लंदन में एसयूपी बरतानिया पारां सैयद ज़ैन शाह जे मान में आजाणियो सिंध जे पाणी वसीलन ऐं वहदत जे तहफ़ लाइ जिदोजहद जारी रखण जो अज़म सैयद ज़ैन शाह चयो आहे त सिंध हिन वक़्तु पंहिंजी तारीख़ जी इंतिहाई अहम ऐं नाज़ुक दौर मां गुज़रे रही आहे। हिकु तरफ़ सिंध जे पाणी वसीलनि ते वार पिया थियनि त ॿिए पासे सिंध जे कुदरती वसीलनि ज़मीननि ऐं अख़्तियारनि ते बि कब्ज़ो करण जूं कोशिशूं जारी आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी

मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराब पर, 03003385।

0: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम में भलीकार ऐं हिन वक़्तु सिलसिलो जारी रखंदासीं कालनि जो, छो जो ब्रेक खां बाद में कालूं वठण जो ई सिलसिलो जारी रहंदो आहे। कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआऊं दुआऊं तव्हां भाइरनि जूं दुआऊं तव्हां ॿुधायो। साईं ख़ुशि आहियो, ख़ैरु आहे?
1: कंहिं
0: महीने खां वठी
1: ॾहें महीने जी ॾहीं तारीख़
0: थी विया आहिनि। 8 महीना थी विया आहिनि 10 महीने जी 10 तारीख़ खां वठी। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर

0: मेमन साहब हटाया हो अग में
1: जे?
0: डॉक्टर साहब हटाया हो अग में कदे को ना
1: डॉक्टर अकबर हमीद से हटाया हूं
0: ना ना हूं डॉक्टर मंजूर साहब जी गाल भी करे उन्हें हटाया हो कौन आया हो
1: ना ना उन्हें तो कौन आया बाबा
0: पोत तू परेशान थिए ही ना यार हर बरो वती दो आठो महीनो थी यो सूर जंग में खयो तुंजी साई समझ रग या सिटी पई होंदी चांदे माखे जुगा हो जंग तो सफा हो लगी पई है सुन
1: हां
0: यही लगी पई थी ना
1: हां वे लगी बड़के पई हेत बड़के पई बाबा
0: बड़कन दिन से बिला कोंदी बड़कन दी ने जो इलाज मौजूद है डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब वट ऐ मालिश कंदो आस
1: जी
0: मालिश कंदो आस मालिश तो कह सुठे डॉक्टर सा रबतो कर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब रोज मानु के मशवरो दे काथो दो गलाई
1: मासे जिलो बेनजीरा पास शहर जाम तक जाता
0: को मसलो ही ना है सुबाने ही हल्या जो डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब मेरापुर में मौजूद आ 30 साल तजुर्बो थस 30 साल जर्मनी का पढेला जर्मनी का जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक का जर्मनी वालन जी फ्रेंचाइज थस शहर में या मेरापुर में रत बत वारो निजाम ना है प्रॉपर तरीके सा इलाज आ अल्लाह ताला जी जात शिफा देने वाली आ डॉक्टर वडो डॉक्टर मशहूर डॉक्टर आ ठीक है
1: आने उने जो था थिंदो पढायो कोर सजा घणा चिंता करीबो
0: बाबा सामो सामो इंदे त तडे जो कोसो दिसी करे तुंजो इलाज शुरू कंदो ई ना है त एतराया एतरा पंजो हकीमन वारो ठगन वारो कम ना है फिक्स ना है मरीज ते डिपेंड आ त उन जो मसलो सामो दिसबो आ वधिक डॉक्टर साहब तो के बुधाए तो एफएम बुद्ध सजो कुछ डॉक्टर साहब सजो तुंजो आवाज बुधे तो पियो ठीक है
1: ਇਕਾ ਬਣਾ ਐਫਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਟੋ ਤੋਸੋ ਲੋ ਮਲਕਨਾ ਇਤੋ ਜੱਗੀ ਦਾ ਫਰੰਦੋ ਉਨੀ ਉਤਾਰੇ ਮੁਕੇ ਨੰਬਰ ਦਿਨੋ
0: ਆ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾ ਪਾਣ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣ ਬੁਧਾਏ ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਂ ਜੋ ਕੋ ਸੋ ਮੁਖਾਤਬ ਆ ਇਨ ਮਲ ਰੇਡੀਓ ਮੇ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਪੇ ਤੁੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ
2: ਔਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ
1: ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਆਏ ਮੁਕੇ ਮੱਤੇ ਪਰੇ
2: जी जी मुखे या गाल असा तवाजी बुधी सी हन ता असा जो प्रोग्राम बुधो और अवां के बुधायो ता त एक्चुअली जेकी ये तकलीफ होंदी आ है या हिर हन वक्त हर बे ट्रे शख्स के या तकलीफ आ है आई खोर सारा पेशेंट जड़ा तवा इन में मुब्तला ना हो इने खा आगे खोर सारा इन में तकलीफ में असा वटी इंदा इन रोंदा विंदा इन खुश थिंदा सो वधिक शिफा इलाज हथ में आ है बाकी एकड़ी गाल या त रग जेकी हुंदी आ वा ब्लॉक थी वेंदी आ पो जी अवा गलती कई है कें वट बुध सुध वेह किथे रत कढ़ाए के घना बिले ढणाइंदा के डंब ॾियारींदा के छिकू ॾियारींदा हाँ भी एक दोस्त शाम भी मूसा गलो तो उन भी यही जो है सो मसलो हो सो उनके भी अस यो ही दस दिनोसी हर पेशेंट की कंडीशन अलग होंगी है उनकी ट्रीटमेंट जो इलाज उनको इलाज थे मेडिकल में उनको ऑपरेशन अस इन जी ट्रीटमेंट थी है बाकी बुद्ध सुध से जो तुम कम कराया इंतहाई गलत हैं अगत हली मू रग जी है वह डैमेज थी वी हलण का भी रह उथण का भी रह इन के हसास मसला हूँ इनके सीरियस वो जो है सो अड़न मे तो जिता नुकसान पहुंचे एक इलाज करायो इलाज ब महीना हल टे महीना हल छ महीना हल जाहिर हर कैंकी कंडीशन होंगी है हर कैंकी मुख्तलिफ़ जो सो तकलीफ़ होंगी है कंखे घनी वरतल होंगी है कंखे थोड़ी होंगी है कंडीशन में थी तो वहाँ के खबर आज है यो ही है करंट लगता है सड़ी टंग वहाँ सड़ी है सुन थी वी सूर थी वी सज रग जो सो ब्लॉक थे सो इन जे करे मालिश भी इन जे लाइ सख़्त मनो आहे ऐं इन जे लाइ हींअर को बि ॾस पंधु अजायो आहे छो जो हिन वक़्तु तव्हां कंडीशन बिगाड़े छॾी आहे ॾंभ ॾियारे रत कढाए सो इन जे लाइ इन जी ट्रीटमेंट थींदी असांजी क्लिनिक मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते वधण पोटरा पेट्रोल पंप जे बिल्कुलु साम्हूं मौजूदु आहे सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदासीं हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे जुमो छंछरु आचर अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक असांजी बंदि हूंदी आहे सो अव्हांखे इहो ई आहे तव्हां रूबरू ॾेखारे वञो वॾी महिरबानी
0: साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई महिरबानी हा हा बिल्कुलु 6 ॾींहं हूंदा आहियूं अरबा खमीस जुमो छंछरु आचर अंगारो ॾींहुं क्लिनिक बंदि आहे ठीकु आहे मुंहिंजे साईं प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 तां लाइव पेश कयो पियो वञे प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं मुहबतूं कॉल जो सिलसिलो जारी ऐं सारी आहे 0301-91-8-51 सखी जाम दातार खां हिन वक़्तु कॉलर लाइन ते मौजूदु हो जेको बीमारी बाबति पुछी रहियो हो डॉक्टर साहिब खां त हुन जी रग ब्लॉक आहे ऐं हुनखे ॾाढी तकलीफ़ आहे जॾहिं रग ब्लॉक हूंदी आहे त यकीननि सॼी जंघ में हिकिड़ो साड़ो रहंदो आहे तकलीफ़ हूंदी ब्लड जो रोलेशन बंदि हूंदो इंसान खे तकलीफ़ हूंदी त हुनखे पंहिंजे हिसाब सां उहो ठीकु आहे प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ वेंदासीं हिकु ॿियो कॉलर आहे ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो अस्सलाम वालेकुम
3: खराब
0: अच्छा माना बदहज़म थिए थो न आफ़री उनखे थींदी आहे जेको मिसाल कंहिंखे उजरी वारो जेको हूंदो आहे न असीं इंसान जेको आहे इंसान खे उजरी न आहे हूंदी हुनखे आफ़री न आहे चइबो आफ़री ॿी कंहिं शइ खे थी सघे थी या कीअं
3: पेट बि फुकजी वञे पेट
0: हा हा बिल्कुलु माना बदहज़मो पेट भरियल या जेकी शइ खात वरी हाज़मो नथो थिए वज़न पेट ते वज़न सीने ते वज़न जलन हूंदी माथे जो मसलो हा बिल्कुलु तव्हां सां माथे जो मसलो हूंदो ॿियो छा ॾिसो माना जिस्म में सूर आहे बसि थकावट ई थकावट तव्हां चवंदो बसि उथो ई न सुता पिया हुजनि हलो माशाल्लाह FM ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो जी डॉक्टर साहब तव्हां साईं जो सवाल सम्झी विया हूंदो
2: जिसे बिल्कुलु भाउ जेके आफ़री जी ॻाल्हि करे थो पेट ते भर्थी वग़ैरह ब्लूमिंग असां चवंदा आहियूं त उहो थी वेंदी आहे अहिड़े तरीक़े सां उनजा खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि बज़ाहिरी माण्हू खे शायदि ईअं ई लॻंदो आहे त असांखे हीअ तकलीफ़ लेकिन जेकी बि अहिड़ी का बि तकलीफ़ थिए थी त ज़ाहिर आहे उहा कंहिं बीमारियुनि जी अलामत हूंदी आहे हाणे उनजो कहिड़ी बीमारी थी सघे थी उहो जॾहिं साम्हूं ईंदो उनखे डायग्नोस कंदा आहियूं उनजी हिस्ट्री वठिबी आहे त हुनजे ख़ानदान में कॾहिं कंहिंखे लिवर प्रॉब्लम त आहे या न आहे कंहिंखे अल्सर रही आहे न आहे एच पैलोरी हूंदी आहे कंहिंखे ॿिया पेट जा मसाला हूंदा आहिनि उहो जॾहिं पेशंट साम्हूं ईंदो आहे त पोइ जेको
0: आहे ख़बर पवंदी आहे
2: अहिड़े तरीक़े सां जेको अॼुकल्ह जी बे वक़्तु खाइणु हूंदो आहे बाज़ारू घणो खाधो हूंदो आहे उनजे करे बि
0: माण्हू इस्तेमालु करे थो उनजे करे बि थींदो
2: चांहि जो इस्तेमालु ज़्यादा जेको आहे
0: सुबुह सां चांहि पियो बग़ैर कंहिं नाश्ते वग़ैरह जे
2: नाश्ते जे
0: तॾहिं बि थींदो आहे
2: तरीक़े या स्मोकिंग जेको आहे सो माण्हू घणी करे थो या टेंशन माण्हू घणी वठे थो या निंड माण्हू जी घटि थिए थी खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि इन जे लाइ असांखे इहो ई ॾिसंदासीं त मुकमल ट्रीटमेंट जे लाइ
0: रूबरूपैथिक
2: ट्रीटमेंट कराइनि रूबरू ॾेखारनि फ़िलहाल जीअं जाण आहे सौंफ़ जीरो अदद चमची रोज़ानो राति जो
0: बरल साईं मां इहो साईं खे सजेस्ट कंदुसि माफ़ु कजो जो माना साईं वेझो आहे एंगोरजन जो सुबुह जो अलियो अचे ॾेखारे वञे वधीक बहितर आहे जो
2: इलाजु
0: फर्स्ट एड आहे
2: ॾेखारण सां ई आहे
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम दुआएं अलहमदुल्ला आप साहब कौन सा बात करें भैया
4: जी जी रानीपुर से बात कर रहा हूँ मोहम्मद रमजान
0: जी जी भाई सिंधी में गलायो भले।
4: अच्छा जी सर, ये थोड़ो पेशाब जो थोड़ो मसलो आए, माने मां कम कंदो आहियां जगरन जो सर।
0: जी जी दादा,
4: वो माना पानी मिसाल 2 लीटर पीऊं था तो माना 1/2 लीटर पेशाब हो जे।
0: सही।
4: हां जलन वगैरह बनाए माने पेशाब माने बिल्कुल खटके हो जे।
0: अरे पेशाब घट तो हो जे माने।
4: जी जी,
0: पानी घणो था पियो, पेशाब घट तो हो जे। ये दा जो
4: जी जी पानी ज्यादा ज्यादा। जी जी,
0: गर्मी में तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करण को जे, ता के जरूरत भी घणी आ है इस्तेमाल करण जी। हो ता के गुर्दे वगैरह जो या मसाने जो को एडो मसलो तो कोने, या के भी की तकलीफ तो ना है?
4: कोई कोई कोई भी इशू ना है, कोई भी
0: इशू ना। उमर घणी आ ता जी?
4: 35
0: साल। अच्छा 35 साल, माशाल्लाह यंग आयो। बुधो एफएम बुधो, डॉक्टर साहब आ के बुधाए तो। जी सर, डॉक्टर साहब।
2: जी सही बिल्कुल, देखे यही चाहिए तो रूबरू दिखार बेहतर है। एक तो अल्ट्रासाउंड उन्होंने थियल है तो खड़ी रूबरू दिखारे वन तो ज्यादा बेहतर होंद है। उनको है सो देखे ये दसी तो जी खीरे वंगे की गाल कई तो सुबह जो नेराने जो है सो ग्रेंड कर खल समेत वो जूस उनको पियन, इंशाल्लाह ताला उनसा भी काफ़ी जो सो अफाको अची वो है। पानी ज़्यादा पियन, कच्ची लस्सी करे जो है सो पियन, या उनमें जो है सो लीमे जो पानी होंद है, लीमे जो जूस पानी जो सो मिक्स करे, वंगो जो वो पियन, इंशाल्लाह ताला ये शयूँ होंदियों जिनसा जो है सो फर्स्ट एड के हिसाब से फ़र्क पवंदो। बाकी अदरवाइज जी डायग्नोस के लिए मैं गाल कई तो अल्ट्रासाउंड थियल होंद है तो उनमें खबर पवंदी है तो किडनीज में प्रॉब्लम है तो उन हवाले से सो बेहतर इलाज थी सकता है। वही
0: प्रोग्राम है सेहत की गाल चीज मेहरापुर एफ एम 94 जो ही आवाज़ अवान जो समाज में पचे पो कल जो सिलसिलो जारी है। सारी है 0301-91-896 असो लाइव कॉल जो नंबर है 0301-91-896 असो लाइव कॉल जो नंबर है। तुम असो प्रोग्राम में बजरिया लाइव कॉल शामिल थी सको था, कदें भी अवे मायूस ना थियण का भी बीमारी लाइलाज ना है। प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब असाजे स्टूडियो में मौजूद आहिन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे साईं आवाज कटजे पे वहां जो दा।
5: अरे नहीं सॉरी तो बलाया।
0: जी जी दा, जी दा।
5: घणा
0: किलो अथव?
5: 78
0: घणो त कोन्हे को वज़न, इहो त मुनासिब आहे। घणी उमिरि अथव?
5: सर उमिरि तक़रीबन थींदी सर 38
0: सर। 38 साल उमिरि आहे तव्हांजो, 78 किलो वज़न आहे, इहो मुनासिब वज़न आहे यार। तव्हांखे अलाए छो महसूसु थिए थो?
5: हाइट हाइट जे हिसाब सां मुंहिंजो वज़न वेट वधीक आहे।
0: अच्छा घणी हाइट आहे तव्हांजी?
5: सर 5 फुट 2 इंच।
0: अच्छा तो सही था जो बुधो एफ एम बुधो डॉक्टर साहब आके बुधाइनो। ठीक है जी डॉक्टर साहब।
2: अज सही बिल्कुल इन जैसे मिसाल गाल जो तकलीफ़ महसूस थे थी तो जो चावर है वो रूटीन में उनके बंद करण है, थदो पानी जो सो बंद करो है, नीम गरम पानी सुबह जो इस्तेमाल कर, ग्रीन टी जो सो उन में लीमो विझी वो इस्तेमाल कर, इंशाल्लाह ताला उनसा काफ़ी अफाको अची वो है। जी मैं पहली गाल कई तो जे भी जे सब्जी वगैरह उनको इस्तेमाल ज़्यादा जो करना है गोश्त वगैरह बंद करो है। वाक के हवाले से ज़ाहिर है जैसे तकलीफ़ महसूस थे थी तो वाक उनके लिए मुफीद होंगी है, वाक करना तमाम ज़रूरी है। अदरवाइज उनकी मेडिसिन्स होंगी है भलो रूबरू दिखो तो बेहतर रहो।
0: प्रोग्राम है सेहत की गाल चीज मेहरापुर एफ एम 94 जो ही आवाज़ अवे समाज में पचे पो। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब असाजे स्टूडियो में मौजूद है जी सेहत बाबत अवे जान दई रहा है। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन 30 साल तजुर्बो रखंद डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब असाजे स्टूडियो में मौजूद आहिनि। कॉलर लाइन ते मौजूद आहे, कॉल जे तरफ़ वेंदासीं, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलामु अलैकुम।
6: वालेकुम सलाम साईं, कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो?
0: दुआ अलहमदिल्ला, कंहिं सां पियो ॻाल्हायो था? हैलो,
6: जी जी साईं, तव्हां केर था ॻाल्हायो?
0: तव्हां अलाए कंहिंसां मुंहिंजो नंबर डायल कयो आहे, हुकुम कयो।
6: असांखे त डॉक्टर मंज़ूर सां ॻाल्हायो।
0: हा, डॉक्टर मंज़ूर साहिबु ॻाल्हाए पियो, हुकुम कयो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। 0301-91-8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, 0301-91-8051। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस न आहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज न आहे। जेकॾहिं अव्हांखे गुर्दे में पथरी आहे, पिते में पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। केॾो बि अव्हांखे संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु आहे, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, चेहरे जो रंग सांवरो आहे, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि में वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। तव्हां कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहिब खां मालूमात वठी सघो था, 0301-91-8051 ते। डॉक्टर साहिब, अॼुकल्ह जीअं गर्मी जी मौसम आहे, जीअं तव्हां खीरे जो ॾस ॾिनो, इन खां अलावा ॿियूं बि जेको आहे सो बीमारियूं, पर पहिरियां काल जो जे तरफ़ हलूं, ॿिए कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलामु अलैकुम।
7: وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟
0: دعا الحمدللہ، کیر پہ گلایا تھا؟
7: حاجی خان مری۔
0: حاجی خان مری، حکم گدا چھا پوچھن چاہندا؟
7: سر کوڑی کمیر ماں تو گلایا
0: جی ادا
7: ڈڑو بار 4 مہینن جو تے چا کام کھنگ چھڈے نہ تو۔
0: اچھا، گھن مہینن جو
7: ہے؟ 4 مہینن جو ہے۔
0: اچھا، 4 مہینن جو ہے۔ ڈاکٹر روبرو کھنی چوس دیکھارے ونیوس، डॉक्टर साहिबु इलाज ॾींदुसि रूबरू वारो वधीक बहितर, छो जो नंढो आहे 4 महीननि जो, इन जे लाइ ॾसु ॾियण बि माना हिकिड़ी ग़लती हूंदी आहे, तंहिंजे करे रूबरू वारो वधीक बहितर थींदो। ठीकु आहे
7: दादा,
0: न इनशा तव्हां डॉक्टर साहिब खां दवा वठंदो, फ़र्क़ु अची वेंदुसि। ठीकु आहे न? ओके, माशा। डॉक्टर साहिबु, नंढो ॿार हो 4 महीननि जो, इन जे करे अधु खे चयोसीं त बहितरु आहे त रूबरू ॾेखारे वञो त वधीक बहितर। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं मेहरापुर FM 94 जो ई आवाज़ तव्हांजो समात में पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशन। जेकॾहिं तव्हांखे मसाने जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गदूद वधियल आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। अव्हांखे गोॾनि जो सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, अव्हांखे नक जी हॾी वधी वई, उन जी तकलीफ़ आहे, मादे जो सूरु आहे, मादे जी अल्सर आहे, तिरी अव्हांजी वधियल आहे, या जेको खाओ था उल्टी करे ॿाहिरि कढो था, या वज़न करे थो, या अव्हां चयो था त गर्मी में अव्हांखे का बि शइ वणे ई नथी, तव्हां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिब सां राबितो करियो, उनजे क्लिनिक ते अचो। अलाह ताला जे हुकुम सां तमामु घणनि बीमारियुनि जो इलाजु मौजूदु आहे, ऐं अलहमदिल्ला तमामु घणा मरीज़ सिहतयाब थी चुका आहिनि डॉक्टर साहिबु वटि। सो डॉक्टर साहिबु, ॻाल्हि कयूं पिया गर्मी खां बचाव जे लाइ, ऐं चवंदुसि तव्हां दोस्तनि खे कुझु मशवरा ॾींदा आहियो, अॻु में बि ॾाढा सुठा मशवरा ॾींदा आहियो, हाणे बि कुझु मशवरा ॾियो त गर्मी खां पंहिंजो पाण कीअं बचाइजे, छो जो हीअ 2 महीना इंतिहाई ख़राबु हूंदा आहिनि, जून ऐं जुलाई वारा, मई जून जुलाई, इहे गर्मी जे लाइ माना ख़ासि तौर ते कुराड़ो माण्हू आहे या नंढो ॿारु आहे उन जे लाइ ज़्यादातर तकलीफ़ पवंदो आहे।
2: अजी साईं, बिल्कुलु हिन वक़्तु जीअं अवां शुरू में ॻाल्हि कई त गर्मी जो जेको दर्जा हरारत आहे 50 अबो वञे थो पियो, त इन में कोशिशि इहा करणी आहे त ॾींहं जो 11 बजे खां बाद में वेंदे 3-4 बजे ताईं ॿाहिरि न निकिरजे त बहितरु आहे, कंहिं थधी छांव में जेको आहे सो माण्हू कमु करे, ज़मानो आहे हलणो बि आहे, लेकिन एहतियात जेको आहे सो तमामु ज़रूरी हूंदो आहे, ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं ॿाहिरि निकिरणो ई आहे त महिरबानी करे जेको आहे सो पाण खे मथो ढके जेको आहे सो ज़रूरु निकिरजे, ऐं चश्मे जो इस्तेमाल जेके बाइक वगैरह दोस्त हलाइन था त उहो चश्मे जो इस्तेमालु ज़रूरु कनि छो जो जेके सिज जा तेज़ शुआउनि जा जेके किरण आहिनि उहे असांजे अखियुनि ते जॾहिं पवनि था त असांजूं अखियूं मुतासिर थी सघनि थियूं ख़राबु थी सघनि थियूं इन जे करे उहो तमामु ज़रूरी आहे पाणी जो इस्तेमालु तमामु छो जो हीउ जेको हीट स्ट्रोक लॻंदो आहे पोइ इन में डिहाइड्रेशन थी वेंदी आहे ऐं जिस्म मां पाणी आठ मुकमल ई जेको आहे सो अचानक से ख़तमु थींदो आहे जंहिंजे करे पोइ माण्हू हाइपो में हलियो वेंदो आहे हाइपो में वञण जो मक़सदु इहो आहे त माण्हू बेहोश थी वेंदो आहे ऐं जॾहिं माण्हू बेहोश थी वेंदो आहे त तकड़ि में उहो उतां निकिरणु बेहोशीअ मां ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे इन जे करे पाणीअ जो इस्तेमालु जिते बि माण्हू गॾु जेकॾहिं लॉन्ग ड्राइव ते वञे थो घणे पंध ते वञे थो त पाणी जी बोतल पाण सां गॾु ज़रूरु हुजे वक़्त वक़्ते सां पाणी जेको आहे सो माण्हू ज़रूरु पीए लीमो पाणी पीए उहो तमामु मुफ़ीद आहे अॼुकल्ह जीअं बहिराड़ियुनि में ऐं लस्सी जो इस्तेमालु हिन मौसम में तमामु बहितरु आहे या मिठाई जो शरबत जेको आहे सो उहो बहितरु हूंदो आहे या ख़ुश्क आलू बुखारा मिलंदा आहिनि राति जो चार पंज दाणा ख़ुश्क आलू बुखारा चार पंज दाणा इमली जा यानी गिदामिड़ी जा राति जो पाणी में पिसाए रखो सुबुह जो नेराने उहो पाणी पियो अव्हांखे काफ़ी जेको आहे सो अव्हांखे सुधीराई मिलंदी ऐं अव्हांजो जेको गर्मी जो दर्जा हरारत आहे ऑटोमेटिकली घटिजी वेंदो डिहाइड्रेशन घटिजी वेंदी उहो बहितरु आहे गुलकंद जेको आहे सो तमामु बहितरु आहे राति जो पाणी में पिसाए रखो ॿ कारा मिर्च नंढिड़ो टुकड़ो मिस्री जो गुलकंद सुबुह जो जेको आहे सो हुनखे पूड़ी ऐं उहो अछा इहो शुगर वारे मरीज़नि जे लाइ मनो आहे बाक़ी ॿियो पेशंट उहे हुनखे इस्तेमालु करे सघनि था काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो पवंदो पाणी ऐं जो इंटेक यानी वधायो पाणी जेतिरो थी सघे ओतिरो तमामु घणो वधायो हिन गर्मीअ में जेको आहे सो गहरे कलर वारा कपिड़ा या जेको आहे सो थुला कपिड़ा पाइण सां घणनि जा शौक़ीन हूंदा आहिनि ऐं उहे इस्तेमालु कंदा आहिनि इन सां जिस्म पची सघे थो गर्मी वधी सघे थी इन जेके लाइट क़िस्म जा कपिड़ा जेको आहे सो पायो नरम सॉफ्ट कपिड़ा पायो त इन सां बि जेको आहे सो अव्हांखे गर्मी खां बची सघो था ऐं इहो ई जेको आहे सो रस्तो आहे ॾींहं में ॿ टे दफ़ा तव्हां विझी सघो था उन सां अव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो पवंदो बजाए गोश्त वग़ैरह इन सीज़न में खाइण जे सब्ज़ियूं इस्तेमालु कयो उहे अव्हांजे लाइ तमामु मुफ़ीद आहे साई तूरी तमामु थधी भाॼी आहे ऐं कद्दू जी भाॼी तमामु बहितरीन आहे इहे जेको आहे सो तव्हां इस्तेमालु करे सघो था खीरो वंगो फारवा आलू बुखारा जरदालू इहे अव्हांजे लाइ पपीतो तमामु बहितरीन हिन मौसम में ई अलाह ताला जो हिकिड़ो करशमो आहे अलाह ताला जा हिकिड़ा देन आहे अलाह ताला जा तोहफ़ा आहिनि अव्हां जे लाइ ई मखसूस हिकिड़ो टाइम जे लाइ इहे शयूं अचनि थियूं ऐं पोइ जेको आहे सो हली वञनि थियूं इन मां जेतिरो थी सघे त ओतिरो तव्हां फ़ाइदो तमामु घणो वठो त जीअं अव्हांजे जिस्म में जेको आहे सो जेकी पाणीअ जी खोट डिहाइड्रेशन थी वञे थी या जेकी कमज़ोरी थी वञे थी माण्हू जिस्म न ढाल थी वञे थो उहो जेको आहे सो उन खां बची सघो था ऐं इहो करण सां अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी सघे
8: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु ऐं अव्हां जेके फ्री ॾींहुं चेकअप कंदा आहियो उहे बि असां दोस्तनि खे ॿुधायो आख़िर में कुझु कयो
2: अॼु साईं प्रोग्राम जे शुरूआति में विच में अवां बि जेको आहे सो पेशंट्स खे दोस्तनि खे लिसनर्स खे ॿुधाईंदा आहियो असां बि ॿुधाईंदा आहियूं वरी ॿीहर ज़रूरु जेको आहे सो इहो नोट कराईंदा हलूं छो जो घणा अंगारे जे ॾींहुं असां वटि फ़ोनूं कंदा आहिनि क्लिनिक ते लेकिन अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे इहो थोरो ज़हन में हुजे ऐं उनखां अलावा टे ॾींहं असां वटि चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे जेके हज़रात उन जेके ग़रीब हज़रात आहिनि उन मां फ़ाइदो वठी सघनि था मिसलनि जुमे जो ॾींहुं छंछरु जो ॾींहुं आचरु जो ॾींहुं असांजी टे ॾींहं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे दवाऊं अलबता पेशंट वठंदो आहे उन खां पोइ जेको आहे टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहे क्लिनिक जो हंधु जेको आहे सो अव्हां सभिनी खे ख़बर आहे मशहूरु आहे हिन वक़्तु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अव्हांजे शहर मेहरापुर में कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोट आहे पेट्रोल पंप अव्हां जीअं जेको आहे सो कोटड़ी खां ईंदो त कॉर्नर ते ई जेको आहे सो पंप आहे उनजे साम्हूं जेको आहे सो क्लिनिक आहे त ऐं नंबर अव्हांखे पुकारियो वियो आहे ॿुधायो वियो आहे 0301-9196-2141 कलाक ई खुलियलु हूंदो आहे सिर्फ़ु इहा महिरबानी कंदा कयो जेके दोस्त राति जेको आहे सो ईअं वांद कई वारी फ़ोनूं कंदा आहिनि उन में जेके असांजो कमु वारो पेशंट हूंदो आहे जेको ज़रूरी जेके मसइलो हूंदो आहे उहो रहिजी वेंदो आहे छो जो ज़ाहिरी आहे त हर को माण्हू मसरूफ़ हूंदो आहे पंहिंजे कमनि कारनि में हूंदो आहे फ़ोन सिर्फ़ु असां उन्हनि खे नंबर ॾिना त जेके जिन खे तकलीफ़ आहे त जीअं असां उन्हनि खे आगाही ॾेई सघूं ऐं हू उन मां फ़ाइदो वठी सघूं।
8: उन मां फ़ाइदो हासिलु। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। इन हिते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान एडवोकेट हाकिम अली जिस्काणी खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान, अलाह वाहिदु।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान जी लेबनान ते इसराइली हमलन जी मसम्मत ऐं गरियल क़ौमनि ते सख़्त तनक़ीद। ईरानी पडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त गुज़िरियल राति लेबनान में इसराइली हमलनि ते गरियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल ख़ामोश रही। ईरान लेबनान जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ा लाइ इन सां गॾु आहे। गुज़िरियल राति लेबनान में इसराइली हमले में औरतुनि ऐं ॿारनि सूदो 11 ॼणा मारिजी विया ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया। अमरीकी सदर अपनाए हुरमुस बदिरां पंहिंजी सिक्योरिटी जो फिक्र करे। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती ऐं परडेही पॉलिसी जी कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो ट्रंप जे अपनाए हुरमुस बाबति बयान ते रद्द अमल। गुज़िरियल ॾींहुं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त अपनाए हुरमुस खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण वञा पियो। बाद में व्हाइट हाउस ट्रंप जे हिन बयान खे मज़ाक करार ॾिनो हो। बलोचिस्तान जे ज़िले खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो कामयाब ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब रद्दतुल फितना 3 तहत सिक्योरिटी फोर्सेज खारान जे इलाइक़े लुजी में ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान फितनतुल फारिज जे 7 दहशतगर्द जनम भेड़ा सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां सिक्योरिटी फोर्सेज खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। बहादुर बलोचन जो दहशतगर्दीअ सां को बि तालुक न आहे। फितनतुल हिंदुस्तान जा दहशतगर्द जबलनि में लिकी वेठल आहिनि, जितां अची आम शहरीनि औरतुनि ऐं ॿारनि खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली जी डिप्टी स्पीकर, सूबाई वज़ीरनि ऐं ॿियनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद बलोच, राहिला हमीद ऐं ॿियनि चयो त बलोचिस्तान में कंहिंखे बि अमन अमान ख़राब करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्द बलोचिस्तान ऐं बलोच अवाम जा ख़ैरख्वाह नथा थी सघनि। घरनि में घिड़ी औरतुनि खे क़तल करणु कहिड़ी बलोच रिवायत आहे। नौशकी में पीएलए जे दहशतगर्दनि ॿिनि औरतुनि खे शहीद कयो। कंहिंजो बि मज़म्मती बयान न आयो। असां जे तक खे इंसाफ़ ॾियारींदासीं ऐं बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी जो ख़ात्मो आणींदासीं।

0: गॾियल क़ौमनि जी सलामती कौंसिल जे 56 मुल्कनि अफ़गान सरज़मीन ते मौजूदु दहशतगर्द ग्रोह खे गॾियल ख़तरो क़रार ॾेई छॾियो। गॾियल बयान में चयो वियो आहे त तालिबान रेजीम में अफ़गान खे इंसानी हक़नि, इमदाद, मईशत ऐं सलामती बाबति चैलेंजिस आहिनि। इहा सूरतहाल पाड़ेसरी मुल्कनि सूदो पूरे ख़िते जे इस्तेहकाम ऐं सलामती लाइ ख़तरो पैदा करे रही आहे।
1: हम आए थे और अपने हिस्से का पाकिस्तान, अपने हिस्से का सिंध लाए थे, जिसको मथरू का सिंध कहा जाता है। जनाब, सिंध की जमीनों का 60% हिंदुओं का था, जो उन्होंने हमारी जाके ले ली है वहां। वो मथरू का सिंध, वो 60% जमीनें हिजरत करने वालों की थी।
2: आज मुल्क चलाने वालों को ये अंदाजा हो गया है कि मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद तरीकेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। तो नाराज हमसे ना हो लोग, नाराज उनसे हो जो ये जो अगर नाराज हो सकते हैं तो वहां पर नाराजगी जाहिर करें।
3: पाकिस्तान की बका, अब पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स के क्याम के बगैर नामुमकिन है।
0: मुल्क बचाइण जो वाहिद तरीक़ो इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिणु आहे। नवां सूबा ठाहिणु क़दारी आहे त इन में इहा ॻाल्हि छो शामिल आहे? नवनि सूबनि जे मुतालबे लाइ एम के एम अॻवाणनि जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी चयो त नवां सूबा मुतालबो न पर वक़्त जी घुर्ज आहिनि। असांजे सूबनि वारी तजवीज़ मां पूरे मुल्क मां आवाज़ उथी रहियो आहे। सिंध मां लॾे वियल हिंदुनि जूं 60% ज़मीनूं असांजूं आहिनि। सिंधियुनि जी महिरबानी जो ॾींहुं बि मल्हाईंदासीं। फारूक सत्तार चयो त मुल्क जी सलामती नवां इंतज़ामी यूनिट ठाहिण में आहे। मुस्तफ़ा कमाल चयो त पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वीटो कयो। इंतज़ामी यूनिट सां सिंध जा हारी बि आज़ाद थींदा। सिंध जे माण्हुनि जी हालत बदतरीन आहे। वराड़ी में जिते कुता पाणी पीअनि था, औरतूं उतां पाणी भरण ते मजबूर आहिनि।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माया गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा केटी बंदर के बंदरगाह मुआशी राहदारी शाह बंदर के माहीगीरी बंदर में बदलाने जो फैसलो 4000 एकड़ जमीन भी मुख्तसर सिंध सा 1947 का फिरार थो कंखे जिम्मेवार था समझो अयाज लतीश पलीजो खां नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जा 19 सवाल सिंध के 45 टीएमसी में सूबाई वफाकी आफिसर के म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर कर तैयारियों तखर जेल में कैदी फरार सवा साल बाद रिपोर्ट पदरी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सूधो 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड चार बरतरफ गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल 8 दिन में दाखिल अज सरकार से एक हिकानी वाली गाल स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा तालीम खाते जा तदबर खां खाली फैसला सहूलतुन बदरां स्कूलन जा डिघा वक्त है सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह सीड़पकारी खाते के हिदायत कई है तो शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन मुताबिक केटी बंदर के तरक्की के लिए जामिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करे वे वजीर चो तो केटी बंदर के जदीद ऊन्हे समुंड की पोर्ट डीप सी पोर्ट एक मरबूत इकतसादी कॉरिडोर से बधल वे बहरी इकतसादी तरक्की के मनसूबे में तब्दील किया वे उन केटी बंदर के लिए एक जामिया काबिले अमल पीपी मॉडल की तजवीज़ चाहें तो मनसूबो सूबाई बजट में बयान कल विजन के मुताबिक तैयार किया वे जो सिंध के खिते के एक अहम बहरी लॉजिस्टिक्स सनती एनर्जी हब तौर बिहारे वे वजीर लागेपल खातन के हिदायत कई है तो वे तफसीली प्लानिंग कन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सनती तरक्की लॉजिस्टिक्स माहीगीरी एनर्जी सहूलत सिहात से लागापल सीड़पकारी के शामिल कर मरहलेवार तरक्याती हमत अमली पेश कन इन अमलदार के हिदायत कई है तो केटी बंदर के मुस्तकबिल के एनर्जी गेटवे तौर तरक्की देने जहा प्लान पिण शामिल क्या वन तजवीज़ में आर एल एनजी एलएनजी एलपीजी की दरामदी सहूलत से गड बया स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करण से शामिल हैं एक फिजिबिलिटी स्टडी अगमी तजवीज़ कयल तरक्की के लिए तकरीबन 4000 एकड़ जमीन की सुजाणप कर चुकी है मुराद शाह मददगार इंफ्रास्ट्रक्चर के तफसीली प्लानिंग जो पिण जैमी रोड रेल बहरी राबता शामिल हैं मुराद अली शाह उन्हें की तरक्की से न सिर्फ कराची पोर्ट दबाव घटबो पर पाकिस्तान के बहरी गुंजाइश में भी इजाफो थो माहीगिरी की बरामदाद के हथी मिली तवानई की सिक्योरिटी मजबूत थी सनतकारी के हथी मिली ए रोजगार जहा वा मौके पैदा थन्दा इन सीड़पकारी खाते की हिदायत कई तो वह एक तफसीली पीपीपी तजवीज़ तैयार कर इम्कानी सीड़पकारी तरक्याती भाईवारी की सुजाणप कर जल्द का जल्द एक जामिया अमल दरामद प्लान पेश करे तो जी मनसूबे के सूबाई बजट में कल वायदन के मुताबिक अगत बढ़ाए सकें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौमी अवामी तरीके के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो के सवालनामा उमड़ छड़ा जैमें मजमूई तौर 19 सवाल पुछा वह जैसे 24 कलाक अंदर जवाब देने की हिदायत कई वही है सवालनामे में पुछो वो है तो जानायल सोशल मीडिया गुफ्तगु जो मकसद ए मौजू छी तकरीर जो मकसद सिंध में कें मखसूस गिरोह या बिरादरी में खौफ बेचैनी दुश्मनी या तकरार पैदा करण हो जात वजाहत करो तेजे तकरीर में चो तो फसाद या इंतशार पैदा कर चाहन था उन बयान में तवी मुराद हुई तवा कें इशारो कर रहा हुआ कड़ी मखसूस हालतुन या मालूमत के बुनियाद से तुम उ बयान दिनो तवी तकरीर में इल्ज़ाम लगा तो 1947 का अज तई सिंध से फिराड किया है तड़न मखसूस वाक्यन या कदम दाँ इशारो कर रहा हुआ उन मुबैना वाक्यन या कदम की जिम्मेवार तुम कंखे समझो था तवे बयान के बुनियाद कड़ा सबूत या मालूमत हुई इन तकरीब के एहतमाम कें हो खिताब करण की दावत कें दिनी हुई तकरीर पा तैयार कई हुई जकरीर या उन मवाद कें तैयार या फराहम किया रिकॉर्ड थियल तकरीर में शामिल बयान तना हुआ तस्दीक कर वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बिना कें तब्दीली या रदो बदल के तकरीर की सही अकासी करे थी उन सोशल मीडिया अकाउंट्स से तवी रसाई उन्होंने तवजो कंट्रोल है उहो मवाद कदें कड़े डिवाइस तड़े हंध त अपलोड किया बाद में तुम मवाद कें बे अकाउंट या प्लेटफॉर्म जरिए शेयर रीपोस्ट फॉरवर्ड या प्रोमोट किया
छा मवाद अपलोड या शेयर करण वक्त तव्हां को कैप्शन हैशटैग तबसरो या बियो मतन शामिल कयो हो? छा तव्हां जे तकरीर जो मक़सदु कंहिं ख़ासि सरगर्मीअ जी हौसला अफ़ज़ाई करणु, उन जी हिमायत करणु, माण्हुनि खे उन जे लाइ भड़काइण या उन ते असर अंदाज़ थियणु हुयो? छा तव्हांखे तकरीर जे मवाद बाबति कंहिं ॿिए शख़्स या तनज़ीम तरफ़ां के हिदायतूं या हिदायतनामा मिलिया हुआ? छा तकरीर उन जी अशात या सोशल मीडिया ते उन जे फैलाव बाबति तव्हां वधीक कुझु बयानु करणु चाहियो था? छा तव्हां वटि कंहिं ॿिए मुल्क जी शहरियत या क़ौमियत आहे? जेकॾहिं हा त महिरबानी करे उन जा तफ़सील फ़राहम करियो। सिंध जे 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी मुक़ररी जे लाइ सूबाई ऐं वफ़ाक़ी आफ़िसरनि खे आणण ते ग़ौर। TMCs में सूबाई ऐं वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ जे 17 ग्रेड जे आफ़िसरनि जे मुक़ररी लाइ मुख़्तस थियल 10% कोटा वधाइण ते ग़ौर शुरू। मकानी खाते कमु करणु शुरू करे छॾियो। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि मकानी खाते सिंध जे 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी मुक़ररी जे लाइ सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड SCUG आफ़िसरनि खे साइड लाइन करणु ऐं सूबाई सर्विस एक्स PCS ग्रुप में सूबाई मैनेजमेंट सर्विस PMS ऐं वफ़ाक मां ईंदड़ कामोरनि जे लाइ मुख़्तस 10% कोटा खे वधाइण ते ग़ौर शुरू करे छॾियो आहे। दरनि मूजिबि मकानी खाते जे अख़्तियारनि पारां अहिड़ियूं तजवीज़ूं पिणु तयारु कयूं वियूं आहिनि, जेकी मुकमल तयारीअ सां सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खाते जे अख़्तियारनि ॾांहुं उमाइण बाद कोटा वधाइण जो मामिलो असेंबली में खयो वेंदो। दरनि मूजिबि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स में माली मामलनि जा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते स्कैंडल साम्हूं अचण खां पोइ SCUG ग्रुप जे आफ़िसरनि खे साइड लाइन करे सूबाई ऐं वफ़ाक़ी सर्विस जे आफ़िसरनि खे म्यूनिसिपल कमिश्नर तौरु मुक़ररु करण वारो फार्मूला अमल हेठि आंदो पियो वञे। हिन वक़्तु सिंध में वफ़ाक़ी ऐं सूबाई सर्विस जा रुॻो 2 आफ़िसर कराची में म्यूनिसिपल कमिश्नरनि तौरु मुक़ररु थियल आहिनि। सिंध हाई कोर्ट जी सूबाई सिलेक्शन कमेटी 13 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजनि जी 21 ग्रेड में तरक़ीअ जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। उन्हनि समी कानून वारे खाते पारां जारी नोटिफिकेशन मूजिबि गुलाम रुज़ा मेतलो, ज़ेबा खटक, शमसुद्दीन जुणे जो, नियाज़ हुसैन, हफीज़ुर रहमान, अब्दुल सतार सुमरो, इलमुद्दीन अब्दुल हकीम, अमजद सुमरो, अल्ताफ़ हुसैन दायो, सोराब बिरोही, शाहिद अली मेमण ऐं मोहम्मद जहांगीर खान खे तरक़ी मिली। 15 महीना अॻु सखर सेंटर जेल मां कचे कैदी अमजद कोराई जे फरार थियण वारे मामिलो सवा साल खां पोइ इंक्वायरी रिपोर्ट पधरी। डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट ऐं असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड। ASI ऐं 3 अहलकार बरतरफ़। जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 3 अहलकारनि जी 5-5 सालनि जी इंक्रीमेंट ख़तमु कई वई। जबरी रिटायर्ड अहलकारनि में डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट आसिफ कोराई, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट महदी रज़ा वसाण, पुलिस कॉन्स्टेबल ख़ालिद रुक, आज़म जुणे जो ऐं मोहम्मद अली चन्ना शामिल आहिनि। जॾहिं तरफ़ अहलकारनि में ASI अतहर मलण, पुलिस कॉन्स्टेबल कमालदीन चाचड़, सुधीर मलण ऐं ईमान अली मेतलो शामिल आहिनि। जेल सुप्रिटेंडेंट ज़ुल्फ़कार आगा, पुलिस कॉन्स्टेबल वहीद खासकेली ऐं भीषम खासकेली जी 5-5 सालनि जी इंक्रीमेंट ख़तमु कई वई आहे। गुज़िरियल साल 9 मई ते सिक्योरिटी 4 मां कचो कैदी अमजद कोराई जेल जी भित टपी फरार थी वियो हो। गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जी हड़ताल 8 ॾींहं में दाख़िल। अॼु गवर्नर हाउस में हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्टरनि विच में अहम ॻाल्हियूं थींदियूं। उन रसमी आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे सदर मलक शहज़ाद अवाण चयो आहे त मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जी पुरमन मुल्कगीर हड़ताल जे ख़ात्मे जे लाइ अॼु गवर्नर हाउस कराची में वफ़ाक, पंजाब ऐं सिंध हुकूमतुनि जे नुमाइंदनि सां अहम ॻाल्हियूं थींदियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान ऐं पंजाब जे सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर ॻाल्हियुनि लाइ कराचीअ पहुचंदा। पंहिंजे वीडियो बयान में हुन चयो त गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जे पुरमन मुल्कगीर हड़ताल खे 8 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। मुल्क जा ट्रांसपोर्टर पंहिंजे मुतालबनि जी मनता जे लाइ एहतजाज ते आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्क अंदरि माल बरदार ट्रांसपोर्टर जी सरगर्मियुनि ते असर पइजी रहियो आहे। हुन चयो त उमेद आहे त अॼु हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्टरनि विच में थींदड़ ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलनि जो हल निकिरंदो ऐं मुल्क में बंदि पियल ट्रांसपोर्ट जो फीथो ॿीहर हलणु शुरू थी वेंदो। हुन चयो त ट्रांसपोर्टरनि जा मुतालबा तस्लीम थियण ताईं पुरमन मुल्कगीर हड़ताल ख़तमु न कई वेंदी। उन ट्रांसपोर्टरनि खे अपील कई आहे त एहतजाज दौरान पुरअमन रहनि ऐं सब्र खां कमु वठनि। होॾां गाॾियुनि जी अचवञ बंदि थियण सबबि किरोड़े रुपियनि जो सामान जी रसद मुतासिर थी वई आहे। हड़ताल जा आम वाइपे जी शयुनि जे अघनि ते बि असर पवण लॻा आहिनि। कराची में कणक 2-2.5 रुपया फी किलो महांगी थियण जो ख़दशो। भाॼियुनि ऐं मेवनि सूदो ॿियनि शयुनि जी रसद मुतासिर थियण जे नतीजे में अघु वधण जो पिणु ख़तरो वधी वियो आहे।

ऐं पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे तालीम खाते तरफ़ां तालीमी इदारनि जे औकात कार में तब्दीली, मोकल जो वक़्तु 2:30 वॻे मुक़ररु करणु ऐं छंछर जी मोकल बाबति कयल फ़ैसिलनि ते मुख़्तलिफ़ सुवाल उभिरी रहिया आहिनि। इंतिज़ामी तौर ते हीउ फ़ैसिलो सादो नज़र अचे थो, पर उन जा सिधा असर शागिर्दनि, उस्तादनि ऐं वालदेन ते पवंदा। तालीमी पॉलिसी ठाहिण वक़्तु सभ खां अहम ॻाल्हि ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे नज़र में रखणु आहे। सिंध जे केतिरनि ई सरकारी स्कूलनि में अॼु बि पीअण जे साफ़ पाणी, बिजली, मुनासिब वॉशरूम, फर्नीचर ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट मौजूदु आहे। अहिड़ी सूरत हाल में सिर्फ़ स्कूल में ॿारनि जी मौजूदगीअ जो वक़्तु वधाइण सां तालीम जो मयार बहितर नथो थी सघे। ख़ासि तौर ते सिंध जे सख़्तु उन्हारे खे नज़र में रखणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं क्लासरूम में मुनासिब हवा, बिजली ऐं पीअण जो पाणी मौजूदु न हुजे त नंढनि ॿारनि खे ढिघे वक़्त ताईं स्कूल में विहारणु संदनि सिखिया बदिरां जिस्मानी तकलीफ़ जो सबबु बणिजी सघे थो। ॿारनि जी उमिरि, सिहत, ज़हनी कैफ़ियत ऐं सिखिया जी सलाहियत खे बि तालीमी पॉलिसीअ जो हिसो बणाइणु घुरिजे। हिकु ॿियो उहो सवाल मुशावरत जो आहे। स्कूलनि जी औकात में तब्दीली जहिड़ा फ़ैसिला करण खां अॻु उस्ताद तनज़ीमुनि, वालदेन, तालीमी माहिरनि ऐं स्कूल इंतिज़ाम सां मुशावरत कई वञे त अमली मसला अॻु ई साम्हूं अची सघनि था। पॉलिसी जॾहिं सिर्फ़ आफ़िसुनि में वेही तयारु कई वञे ऐं स्कूलनि जे हक़ीक़ी सूरत हाल खे नज़रअंदाज़ कयो वञे त उन जा नतीजा मसलनि जी सूरत हाल में ज़ाहिर थियण जो इम्कान वधी वञे थो। तालीम खाते जे लाइ ज़रूरी आहे त वक़्तु वधाइण या औकातकार तब्दील करण खां अॻु स्कूलनि जी बुनियादी सहूलियतुनि जो जाइज़ो वठे। जिन इदारनि में पाणी, बिजली, वॉशरूम्स, फर्नीचर ऐं महफ़ूज़ तालीमी माहौल मौजूदु नाहे, उते पहिरियां उहे सहूलियतूं फराहम करणु घुरिजनि। बहितर तालीम जो मयार सिर्फ़ स्कूल में गुज़ारियल कलाकनि सां न पर बहितर माहौल, मयारी तदरीस, बुनियादी सहूलियतुनि ऐं मुयसरु इंतिज़ाम सां हासिलु थींदो आहे। तंहिं करे तालीम खाते खे पंहिंजे नई औकातकार वारे फ़ैसिले ते ॿीहर गौर करणु, लाॻापियल धुरियुनि सां मुशावरत करणु ऐं ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखे पॉलिसी जोड़णु घुरिजे। ॿारनि खे वधीक वक़्तु स्कूल में रखण खां अॻु खेनि सिखण जे लाइ मुनासिब माहौल फराहम करणी तालीम जी हक़ीक़ी बहितरी तरफ़ क़दम हूंदो। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-69।
2: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं।

0: 8951
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803743
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकदा केटी बंदर के बंदरगाह मुआशी राहदारी शाह बंदर के माहीगीरी बंदर में बदलाने जो फैसलो 4000 एकड़ जमीन भी मुख्तसर सिंध से 1947 का फरार थो कंखे जिम्मेवार था समझो अयाज लतीश पलीजो खां नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जा 19 सवाल सिंध के 45 टीएमसी में सूबाई वफाकी आफिसर के म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर करने की तैयारियों तखर जेल में कैदी फरार सवा साल बाद रिपोर्ट पदरी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सूदो 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड 4 बरतरफ गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल 8 दिन में दाखिल अज सरकार से एक हिकानी वाली गाल स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा तालीम खाते जा तदबर खां खाली फैसला सहूलतुन बदरां स्कूलन जा डिघा वक्त है सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह सीड़पकारी खाते के हिदायत कई है तो शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन मुताबिक केटी बंदर के तरक्की के लिए जामिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करें वे वजीर चो तो केटी बंदर के जदीद ऊन्हे समुंड की पोर्ट डीप सी पोर्ट एक मरबूत इकतसादी कॉरिडोर से बधल वे बहरी इकतसादी तरक्की के मनसूबे में तब्दील किया वे उन्हें चो तो आऊँ केटी बंदर के लिए एक जामिया काबिल अमल पीपी मॉडल की तजवीज़ चाहें तो मनसूबो सूबाई बजट में बयान कल विजन के मुताबिक तैयार किया वे जो सिंध के खिते के एक अहम बहरी लॉजिस्टिक्स सनती एनर्जी हब तौर बिहारे वे वजीर लागेपल खातन के हिदायत कई है तो उ तफसीली प्लानिंग कन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सनती तरक्की लॉजिस्टिक्स माहीगीरी एनर्जी सहूलत सेहत से लागापल सीड़पकारी के शामिल कर मरहलेवार तरक्याती हिकमत अमली पेश कन इन अमलदार हिदायत कई है केटी बंदर के मुस्तकबिल के एनर्जी गेट वे तौर तरक्की देने जहा प्लान पिण शामिल क्या वन तजवीज में आर एल एनजी एलएनजी एलपीजी की दरामदी सहूलत से गड बया स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करण से शामिल है एक फिजिबिलिटी स्टडी अगमी तजवीज कयल तरक्की के लिए तकरीबन 4000 एकड़ जमीन की सुजाणप कर चुकी है मुराद शाह मददगार इंफ्रास्ट्रक्चर के तफसीली प्लानिंग जो पिण जैमी रोड रेल बहरी राबता शामिल है मुराद अली शाह चो तो उन्हें तरक्की से न सिर्फ कराची पोर्ट से दबाव घटबो पर पाकिस्तान के बहरी गुंजाइश में भी इजाफो थो माहीगिरी की बरामदाद के हथी मिली तवानई की सिक्योरिटी मजबूत थी सनतकारी के हथी मिली ए रोजगार जहा वा मौके पैदा थन्दा इन सीड़पकारी खाते की हिदायत कई तो वह एक तफसीली पीपीपी तजवीज तैयार कर इम्कानी सीड़पकारी तरक्याती भाईवारी की सुजाणप कर जल्द खां जल्द एक जामिया अमल दरामद प्लान पेश करे तो जी मनसूबे के सूबाई बजट में कल वायदन के मुताबिक अगते बढ़ाए सकजे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौमी अवामी तरीके के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो के सवालनामा उमड़े छड़ा जैमें मजमूई तौर 19 सवाल पुछा वह जैसे 24 कलाक अंदर जवाब देने की हिदायत कई वही है सवालनामे में पुछो वो है तो जानायल सोशल मीडिया गुफ्तगु जो मकसद मौजू हो तकरीर जो मकसद सिंध में कें मखसूस गिरोह या बिरादरी में खौफ बेचैनी दुश्मनी या तकरार पैदा करण हो जैसे हाँ तो वजाहत करो तवे तकरीर में चो तो फसाद या इंतशार पैदा करण चाहन था उन बयान में तवी मुराद हुई तवा कें दां इशारो कर रहा हुआ कड़ी मखसूस हालत या मालूम के बुनियाद से तुम बयान दिनों तुम पाँगी तकरीर में इल्ज़ाम लगा तो 1947 का अज तई सिंध से फिराड किया वो है तुम कड़े मखसूस वाक्यन या कदम दां इशारो कर रहा हुआ उन मुबैना वाक्यन या कदम की जिम्मेवार तुम कें समझो था तवे बयान के बुनियाद कड़ा सबूत या मालूम हुई इन तकरीब के अहतमाम कें हो तवा के खिताब करण की दावत कें दिनी हुई तवा तकरीर पान तैयार कई हुई जन तकरीर या उन मवाद कें तैयार या फराहम किया रिकॉर्ड थियल तकरीर में शामिल बयान तवा ही दिना हुआ तवा तस्दीक कर वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बिना कें तब्दीली या रदो बदल के तवे तकरीर की सही अकासी करे थी छा उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट से तवा की रसाई उन्होंने तवा जो कंट्रोल है वो मवाद कदें कड़े डिवाइस तड़े हंध अपलोड किया वो बाद में तवा वो मवाद कें बे अकाउंट या प्लेटफॉर्म जरिए शेयर रीपोस्ट
फॉरवर्ड या प्रोमोट कयो। छा मवाद अपलोड या शेयर करण वक्त तव्हां को कैप्शन, हैशटैग, तबसरो या बियो मतन शामिल कयो हो? छा तव्हां जे तकरीर जो मकसद कंहिं ख़ासि सरगर्मीअ जी हौसला अफ़ज़ाई करण, उन जी हिमायत करण, माण्हुनि खे उन्हीअ जे लाइ भड़काइण या उन ते असर अंदाज़ थियणो हुयो? छा तव्हांखे तकरीर जे मवाद बाबति कंहिं ॿिए शख़्स या तनज़ीम तरफ़ां के हिदायतूं या हिदायतनामा मिलिया हुआ? छा तकरीर उन जी अशात या सोशल मीडिया ते उन जे फैलाव बाबति तव्हां वधीक कुझु बयानु करणु चाहियो था? छा तव्हां वटि कंहिं ॿिए मुल्क जी शहरियत या क़ौमियत आहे? जेकॾहिं हा त महिरबानी करे उन जा तफ़सील फ़राहम करियो। सिंध जे 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी मुक़ररी जे लाइ सूबाई ऐं वफ़ाक़ी आफ़िसरनि खे आणण ते ग़ौर। TMCs में सूबाई ऐं वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ जे 17 ग्रेड जे आफ़िसरनि जे मुक़ररी लाइ मुख़्तस थियल 10% कोटा वधाइण ते ग़ौर शुरू। मकानी खाते कमु करणु शुरू करे छॾियो। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि मकानी खाते सिंध जे 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी मुक़ररी जे लाइ सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड SCUG आफ़िसरनि खे साइड लाइन करणु ऐं सूबाई सर्विस एक्स PCS ग्रुप में सूबाई मैनेजमेंट सर्विस PMS ऐं वफ़ाक़ मां ईंदड़ कामोरनि जे लाइ मुख़्तस 10% कोटा खे वधाइण ते ग़ौर शुरू करे छॾियो आहे। ज़रियनि मूजिबि मकानी खाते जे अख़्तियारनि पारां अहिड़ियूं तजवीज़ूं पिणु तयारु कयूं वियूं आहिनि जेकी मुकमल तयारीअ सां सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खाते जे अख़्तियारनि ॾांहुं उमाइण बाद कोटा वधाइण जो मामिलो असेंबली में खयो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स में माली मामलनि जा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते स्कैंडल साम्हूं अचण खां पोइ SCUG ग्रुप जे आफ़िसरनि खे साइड लाइन करे सूबाई ऐं वफ़ाक़ी सर्विस जे आफ़िसरनि खे म्यूनिसिपल कमिश्नर तौरु मुक़ररु करण वारो फार्मूला अमल हेठि आंदो पियो वञे। हिन वक़्तु सिंध में वफ़ाक़ी ऐं सूबाई सर्विस जा रुॻो 2 आफ़िसर कराची में म्यूनिसिपल कमिश्नरनि तौरु मुक़ररु थियल आहिनि। सिंध हाई कोर्ट जी सूबाई सिलेक्शन कमेटी 13 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजनि जी 21 ग्रेड में तरक़ीअ जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। उन समी कानून वारे खाते पारां जारी नोटिफिकेशन मूजिबि गुलाम रुज़ा मेतलो, ज़ेबा खटक, शमसुद्दीन जुणे जो, नियाज़ हुसैन, हफीज़ुर रहमान, अब्दुल सत्तार सूमरो, इलमुद्दीन अब्दुल हकीम, अमजद सूमरो, अल्ताफ़ हुसैन दायो, सोराब बिरोही, शाहिद अली मेमण ऐं मोहम्मद जहांगीर खान खे तरक़ी मिली। 15 महीना अॻु सखर सेंटर जेल मां कचे कैदी अमजद कोराई जे फरार थियण वारे मामिलो सवा साल खां पोइ इंक्वायरी रिपोर्ट पधरी। डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट ऐं असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड, ASI ऐं 3 अहलकार बरतरफ़। जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 3 अहलकारनि जी 5-5 सालनि जी इंक्रीमेंट ख़तमु कई वई। जबरी रिटायर्ड अहलकारनि में डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट आसिफ़ कोराई, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट महदी रज़ा वसाण, पुलिस कॉन्स्टेबल ख़ालिद रुक, आज़म जुणे जो ऐं मोहम्मद अली चना शामिल आहिनि। जॾहिं तरफ़ अहलकारनि में ASI अतहर मलण, पुलिस कॉन्स्टेबल कमालदीन चाचड़, सुधीर मलण ऐं ईमान अली मित्लो शामिल आहिनि। जेल सुप्रिटेंडेंट ज़ुल्फ़कार आगा, पुलिस कॉन्स्टेबल वहीद खासकेली ऐं भीषम खासकेली जी 5-5 सालनि जी इंक्रीमेंट ख़तमु कई वई आहे। गुज़िरियल साल 9 मई ते सिक्योरिटी 4 मां कचो कैदी अमजद कोराई जेल जी भित टपी फरार थी वियो हो। गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जी हड़ताल 8 ॾींहं में दाख़िल। अॼु गवर्नर हाउस में हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्टरनि विच में अहम ॻाल्हियूं थींदियूं। उन रस्म में आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे सदर मलक शहज़ाद अवाण चयो आहे त मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जी पुरमन मुल्कगीर हड़ताल जे ख़ात्मे जे लाइ अॼु गवर्नर हाउस कराची में वफ़ाक, पंजाब ऐं सिंध हुकूमतुनि जे नुमाइंदनि सां अहम ॻाल्हियूं थींदियूं। वफ़ाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान ऐं पंजाब जे सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर ॻाल्हियुनि लाइ कराचीअ पहुचंदा। पंहिंजे वीडियो बयान में हुन चयो त गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जे पुरमन मुल्कगीर हड़ताल खे 8 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। मुल्क जा ट्रांसपोर्टर पंहिंजे मुतालबनि जी मनता जे लाइ एहतजाज ते आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्क अंदरि माल बरदार ट्रांसपोर्टर जी सरगर्मियुनि ते असर पइजी रहियो आहे। हुन चयो त उमेद आहे त अॼु हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्टरनि विच में थींदड़ ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलनि जो हल निकिरंदो ऐं मुल्क में बंदि पियल ट्रांसपोर्ट जो फीथो ॿीहर हलणु शुरू थी वेंदो। हुन चयो त ट्रांसपोर्टरनि जा मुतालबा तस्लीम थियण ताईं पुरमन मुल्कगीर हड़ताल ख़तमु न कई वेंदी। उन ट्रांसपोर्टरनि खे अपील कई आहे त एहतजाज दौरान पुरमन रहनि ऐं सब्र खां कमु वठनि। होॾां गाॾियुनि जी अच वञ बंदि थियण सबबि किरोड़े रुपियनि जो सामान जी रसद मुतासिर थी वई आहे। हड़ताल जा आम वाइपे जी शयुनि जे अघनि ते बि असर पवण लॻा आहिनि। कराचीअ में कणिक 2-2.5 रुपया फी किलो महांगी थियण जो ख़दशो, भाॼियुनि ऐं मेवनि सूदो ॿियनि शयुनि जी रसद मुतासिर थियण जे नतीजे में अघु वधण जो पिणु ख़तरो वधी वियो आहे।

0: ऐं पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे तालीम खाते तरफ़ां तालीमी इदारनि जे औकात कार में तब्दीली, मोकल जो वक़्तु 2:30 वॻे मुक़ररु करणु ऐं छंछर जी मोकल बाबति कयल फ़ैसिलनि ते मुख़्तलिफ़ सवाल उभिरी रहिया आहिनि। इंतिज़ामी तौर ते हीउ फ़ैसिलो सादो नज़र अचे थो, पर उन जा सिधा असर शागिर्दनि, उस्तादनि ऐं वालदेन ते पवंदा। तालीमी पॉलिसी ठाहिण वक़्तु सभ खां अहम ॻाल्हि ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे नज़र में रखणु आहे। सिंध जे केतिरनि ई सरकारी स्कूलनि में अॼु बि पीअण जे साफ़ पाणी, बिजली, मुनासिब वॉशरूम, फर्नीचर ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट मौजूदु आहे। अहिड़ी सूरत हाल में सिर्फ़ स्कूल में ॿारनि जी मौजूदगीअ जो वक़्तु वधाइण सां तालीम जो मयारु बहितरु नथो थी सघे। ख़ासि तौर ते सिंध जे सख़्तु उन्हारे खे नज़र में रखणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं क्लासरूम में मुनासिब हवा, बिजली ऐं पीअण जो पाणी मौजूदु न हुजे त नंढनि ॿारनि खे ॾिघे वक़्त ताईं स्कूल में विहारणु संदनि सिखिया बदिरां जिस्मानी तकलीफ़ जो सबबु बणिजी सघे थो। ॿारनि जी उमिरि, सिहत, ज़हनी कैफ़ियत ऐं सिखिया जी सलाहियत खे बि तालीमी पॉलिसीअ जो हिसो बणाइणु घुरिजे। हिकु ॿियो उहो सवाल मुशावरत जो आहे। स्कूलनि जी औकात में तब्दीली जहिड़ा फ़ैसिला करण खां अॻु उस्ताद तनज़ीमुनि, वालदेन, तालीमी माहिरनि ऐं स्कूल इंतिज़ामिया सां मुशावरत कई वञे त अमली मसला अॻु ई साम्हूं अची सघनि था। पॉलिसी जॾहिं सिर्फ़ु आफ़िसुनि में वेही तयारु कई वञे ऐं स्कूलनि जे हक़ीक़ी सूरत हाल खे नज़रअंदाज़ कयो वञे त उन जा नतीजा मसलनि जी सूरत हाल में ज़ाहिर थियण जो इम्कान वधी वञे थो। तालीम खाते जे लाइ ज़रूरी आहे त वक़्तु वधाइण या औकात खां अॻु स्कूलनि जी बुनियादी सहूलियतुनि जो जाइज़ो वठे। जिन इदारनि में पाणी, बिजली, वॉशरूम, फर्नीचर ऐं महफ़ूज़ तालीमी माहौल मौजूदु नाहे, उते पहिरियां उहे सहूलियतूं फराहम करणु घुरिजनि। बहितर तालीम जो मयारु सिर्फ़ स्कूल में गुज़ारियल कलाकनि सां न पर बहितर माहौल, मयारी तदरीस, बुनियादी सहूलियतुनि ऐं मुयसरु इंतिज़ाम सां हासिलु थींदो आहे। तंहिं करे तालीम खाते खे पंहिंजे नई औकातकार वारे फ़ैसिले ते ॿीहर गौर करणु, लाॻापियल धुरियुनि सां मुशावरत करणु ऐं ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखे पॉलिसी जोड़णु घुरिजे। ॿारनि खे वधीक वक़्तु स्कूल में रखण खां अॻु खेनि सिखण जे लाइ मुनासिब माहौल फराहम करणी तालीम जी हक़ीक़ी बहितरी तरफ़ क़दमु हूंदो। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212 0।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर, असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ 2, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर करवाएं। पता: रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
4: 0300 3246 9 0200 4600

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन

0: दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकदा केटी बंदर के बंदरगाह मुआशी राहदारी, शाह बंदर के माहीगीरी बंदर में बदलाने जो फैसलो, 4000 एकड़ जमीन भी मुख्तसर। सिंध सा 1947 का फरार थे, कंखे जिम्मेवार था समझो, अयाज लतीश पलीजो खां नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जा 19 सवाल। सिंध के 45 टीएमसी में सूबाई वफाकी आफिसरन के म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर करने जो तैयारियों। तखर जेल में कैदी फरार, सवा साल बाद रिपोर्ट पदरी, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सूधो 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड, 4 बरतरफ। गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल 8 दिन में दाखिल, आज सरकार से हिकानी वाली गाल। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा, तालीम खाते जा तदबर खां खाली फैसला, सहूलतुन बदरां स्कूलन जा डिघा वक्त। सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह सीड़पकारी खाते के हिदायत कई है तो शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन मुताबिक केटी बंदर के तरक्की के लिए जामिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करें। वे वजीर चो तो केटी बंदर के जदीद ऊन्हे समुंड की पोर्ट, डीप सी पोर्ट एक मरबूत इकतसादी कॉरिडोर से बधल वे बहरी इकतसादी तरक्की के मनसूबे में तब्दील किया वे। उन्होंने चो तो केटी बंदर के लिए एक जामिया काबिल अमल पीपी मॉडल की तजवीज़ चाहें तो। मनसूबो सूबाई बजट में बयान कल विजन के मुताबिक तैयार किया वे जो सिंध के खिते के एक अहम बहरी लॉजिस्टिक्स सनती एनर्जी हब तौर बिहारे। वे वजीर लागेपल खातन के हिदायत कई है तो तफसीली प्लानिंग कन, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सनती तरक्की लॉजिस्टिक्स माहीगीरी एनर्जी सहूलतुन सेहत से लागापल सीड़पकारी के शामिल कर मरहलेवार तरक्याती हिकमत अमली पेश कन। इन अमलदारन के हिदायत कई है तो केटी बंदर के मुस्तकबिल के एनर्जी गेट वे तौर तरक्की देने जहा प्लान पिण शामिल क्या वन। तजवीज में RLNG, LNG LPG की दरामदी सहूलत से गड बया स्ट्रेटजिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करण से शामिल है। एक फिजिबिलिटी स्टडी अगमी तजवीज़ कल तरक्की के लिए तकरीबन 4000 एकड़ जमीन की सुजाणप कर चुकी है। मुराद शाह मददगार इंफ्रास्ट्रक्चर के तफसीली प्लानिंग जो पिण जैमी रोड रेल बहरी राबता शामिल है। मुराद अली शाह तो उन्हीं की तरक्की से न सिर्फ कराची पोर्ट से दबा घटबो पर पाकिस्तान के बहरी गुंजाइश में भी इजाफो थो। माहीगिरी की बरामदाद के हथी मिली तवानई की सिक्योरिटी मजबूत थी, सनतकारी के हथी मिली रोजगार जहा वा मौके पैदा थन्दा। इन सीड़पकारी खाते की हिदायत कई तो वह एक तफसीली PPP तजवीज़ तैयार करें, इम्कानी सीड़पकारी तरक्याती भाईवारी की सुजाणप करें, जल्द का जल्द एक जामिया अमल दरामद प्लान पेश करें तो जी मनसूबे के सूबाई बजट में कल वायदन के मुताबिक अगत बधाए सकें। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौमी अवामी तरीके के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो के सवालनामा उमड़े छड़ा जैमे मजमू तौर 19 सवाल पुछा वह जैसे 24 कलाक अंदर जवाब देने की हिदायत कई वही है। सवालनामे में पुछो वो है तो जानायल सोशल मीडिया गुफ्तगु जो मकसद मौजू हो तकरीर जो मकसद सिंध में कें मखसूस गिरोह या बिरादरी में खौफ बेचैनी दुश्मनी या तकरार पैदा करण हो जात वजाहत करो तेजे तकरीर में चो तो फसाद या इंतशार पैदा करण चाहन था। उन्हें बयान में तवी मुराद हुई तवा कें ना इशारो कर रहा हुआ कड़ी मखसूस हालत उन या मालूमात के बुनियाद से तुम बयान दिनों तवा पांजी तकरीर में इल्ज़ाम लगाया तो 1947 का अज तई सिंध से फिराड किया वो है तवा कड़न मखसूस वाक्यन या कदम दा इशारो कर रहा हुआ उन्हें मुबैना वाक्यन या कदम की जिम्मेवार तुम कें समझो था तवे बयान के बुनियाद कड़ा सबूत या मालूमात हुई इन तकरीब के एहतमाम कें हो तवे खिताब करण की दावत कें दिनी हुई तकरीर पा तैयार कई हुई जन तो तकरीर या उन मवाद कें तैयार या फराहम किया रिकॉर्ड थियल तकरीर में शामिल बयान तवा ही दिना हुआ तस्दीक करो था वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बिना कें तब्दीली या रदो बदल के तवे तकरीर की सही अकासी करे थी उन सोशल मीडिया अकाउंट से तवे रसाई उन्होंने तवजो कंट्रोल है उहो मवाद कदें कड़े डिवाइस तड़े हंध तपलोड किया वो बाद में तुम मवाद कें बे अकाउंट या प्लेटफॉर्म जरिए शेयर रीपोस्ट फॉरवर्ड या प्रोमोट कर
छा मवाद अपलोड या शेयर करण वक्त तव्हां को कैप्शन हैशटैग तबसरो या बियो मतन शामिल कयो हो? छा तव्हां जी तकरीर जो मकसद कंहिं ख़ासि सरगर्मीअ जी हौसला अफ़ज़ाई करण, उन जी हिमायत करण, माण्हुनि खे उन्हीअ जे लाइ भड़काइण या उन ते असर अंदाज़ थियणो हुयो? छा तव्हांखे तकरीर जे मवाद बाबति कंहिं ॿिए शख़्स या तनज़ीम तरफ़ां के हिदायतूं या हिदायतनामा मिलिया हुआ? छा तकरीर उन जी अशात या सोशल मीडिया ते उन जे फैलाव बाबति तव्हां वधीक कुझु बयानु करणु चाहियो था? छा तव्हां वटि कंहिं ॿिए मुल्क जी शहरियत या क़ौमियत आहे? जेकॾहिं हा त महिरबानी करे उन जा तफ़सील फ़राहम करियो। सिंध जे 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी मुक़ररी जे लाइ सूबाई ऐं वफ़ाक़ी आफ़िसरनि खे आइण ते ग़ौर। TMCs में सूबाई ऐं वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ जे 17 ग्रेड जे आफ़िसरनि जे मुक़ररी लाइ मुख़्तस थियल 10% कोटा वधाइण ते ग़ौर शुरू। मकानी खाते कमु करणु शुरू करे छॾियो। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि मकानी खाते सिंध जे 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी मुक़ररी जे लाइ सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड SCUG आफ़िसरनि खे साइड लाइन करण ऐं सूबाई सर्विस एक्स PCS ग्रुप में सूबाई मैनेजमेंट सर्विस PMS ऐं वफ़ाक़ मां ईंदड़ कामोरनि जे लाइ मुख़्तस 10% कोटा खे वधाइण ते ग़ौर शुरू करे छॾियो आहे। ज़रियनि मूजिबि मकानी खाते जे अख़्तियारनि पारां अहिड़ियूं तजवीज़ूं पिणु तयारु कयूं वियूं आहिनि जेकी मुकमल तयारीअ सां सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खाते जे अख़्तियारनि ॾांहुं उमाइण बाद कोटा वधाइण जो मामिलो असेंबली में खयो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स में माली मामलनि जा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते स्कैंडल साम्हूं अचण खां पोइ SCUG ग्रुप जे आफ़िसरनि खे साइड लाइन करे सूबाई ऐं वफ़ाक़ी सर्विस जे आफ़िसरनि खे म्यूनिसिपल कमिश्नर तौरु मुक़ररु करण वारो फार्मूला अमल हेठि आंदो पियो वञे। हिन वक़्तु सिंध में वफ़ाक़ी ऐं सूबाई सर्विस जा रुॻो 2 आफ़िसर कराची में म्यूनिसिपल कमिश्नरनि तौरु मुक़ररु थियल आहिनि। सिंध हाई कोर्ट जी सूबाई सिलेक्शन कमेटी 13 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजनि जी 21 ग्रेड में तरक़ीअ जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। उन समी कानून वारे खाते पारां जारी नोटिफिकेशन मूजिबि गुलाम मुर्तज़ा मेतलो, ज़ेबा खटक, शमसुद्दीन जुणेजो, नियाज़ हुसैन, हफीज़ुर रहमान, अब्दुल सतार सूमरो, इलमुद्दीन अब्दुल हकीम, अमजद सूमरो, अल्ताफ़ हुसैन दायो, सोराब बिरोही, शाहिद अली मेमण ऐं मोहम्मद जहांगीर खान खे तरक़ी मिली। 15 महीना अॻु सखर सेंटर जेल मां कचे कैदी अमजद कोराई जे फरार थियण वारे मामिलो सवा साल खां पोइ इंक्वायरी रिपोर्ट पधरी। डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट ऐं असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड। ASI ऐं 3 अहलकार बरतरफ़। जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 3 अहलकारनि जी 5-5 सालनि जी इंक्रीमेंट ख़तमु कई वई। जबरी रिटायर्ड अहलकारनि में डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट आसिफ़ कोराई, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट महदी रज़ा वसाण, पुलिस कॉन्स्टेबल ख़ालिद रुक, आज़म जुनेजो ऐं मोहम्मद अली चना शामिल आहिनि। जॾहिं तरफ़ अहलकारनि में ASI अतहर मलहण, पुलिस कॉन्स्टेबल कमालदीन चाचड़, सुधीर मलहण ऐं ईमान अली मित्रो शामिल आहिनि। जेल सुप्रिटेंडेंट ज़ुल्फ़कार आगा, पुलिस कॉन्स्टेबल वहीद ख़ासकेली ऐं भीषम ख़ासकेली जी 5-5 सालनि जी इंक्रीमेंट ख़तमु कई वई आहे। गुज़िरियल साल 9 मई ते सिक्योरिटी 4 मां कचो कैदी अमजद कोराई जेल जी भित टपी फरार थी वियो हो। गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जी हड़ताल 8 ॾींहं में दाखिल। अॼु गवर्नर हाउस में हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्टरनि विच में अहम ॻाल्हियूं थींदियूं। उन रस्म में आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे सदर मलक शहज़ाद अवाण चयो आहे त मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जी पुरमन मुल्कगीर हड़ताल जे ख़ात्मे जे लाइ अॼु गवर्नर हाउस कराची में वफ़ाक, पंजाब ऐं सिंध हुकूमतुनि जे नुमाइंदनि सां अहम ॻाल्हियूं थींदियूं। वफ़ाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान ऐं पंजाब जे सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर ॻाल्हियुनि लाइ कराचीअ पहुचंदा। पंहिंजे वीडियो बयान में हुन चयो त गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जे पुरमन मुल्कगीर हड़ताल खे 8 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। मुल्क जा ट्रांसपोर्टर पंहिंजे मुतालबनि जी मनता जे लाइ एहतजाज ते आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्क अंदरि माल बरदार ट्रांसपोर्टर जी सरगर्मियुनि ते असर पइजी रहियो आहे। हुन चयो त उमेद आहे त अॼु हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्टरनि विच में थींदड़ ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलनि जो हल निकिरंदो ऐं मुल्क में बंदि पियल ट्रांसपोर्ट जो फीथो ॿीहर हलणु शुरू थी वेंदो। हुन चयो त ट्रांसपोर्टरनि जा मुतालबा तस्लीम थियण ताईं पुरमन मुल्कगीर हड़ताल ख़तमु न कई वेंदी। उन ट्रांसपोर्टरनि खे अपील कई आहे त एहतजाज दौरान पुरमन रहनि ऐं सब्र खां कमु वठनि। होॾां गाॾियुनि जी अच वञ बंदि थियण सबबि किरोड़े रुपियनि जो सामान जी रसद मुतासिर थी वई आहे। हड़ताल जा आम वाइपे जी शयुनि जे अघनि ते बि असर पवण लॻा आहिनि। कराचीअ में कणक 2-2.5 रुपया फी किलो महांगी थियण जो ख़दशो। भाॼियुनि ऐं मेवनि सूदो ॿियनि शयुनि जी रसद मुतासिर थियण जे नतीजे में अघु वधण जो पिणु ख़तरो वधी वियो आहे।

0: ऐं पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे तालीम खाते तरफ़ां तालीमी इदारनि जे औकात कार में तब्दीली, मोकल जो वक़्तु 2:30 वॻे मुक़ररु करणु ऐं छंछर जी मोकल बाबति कयल फ़ैसिलनि ते मुख़्तलिफ़ सुवाल उभिरी रहिया आहिनि। इंतिज़ामी तौर ते हीउ फ़ैसिलो सादो नज़र अचे थो, पर उन जा सिधा असर शागिर्दनि, उस्तादनि ऐं वालदेन ते पवंदा। तालीमी पॉलिसी ठाहिण वक़्तु सभ खां अहम ॻाल्हि ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे नज़र में रखणु आहे। सिंध जे केतिरनि ई सरकारी स्कूलनि में अॼु बि पीअण जे साफ़ पाणी, बिजली, मुनासिब वॉशरूम, फर्नीचर ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट मौजूदु आहे। अहिड़ी सूरत हाल में सिर्फ़ स्कूल में ॿारनि जी मौजूदगीअ जो वक़्तु वधाइण सां तालीम जो मयार बहितर नथो थी सघे। ख़ासि तौर ते सिंध जे सख़्तु उन्हारे खे नज़र में रखणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं क्लास रूम में मुनासिब हवा, बिजली ऐं पीअण जो पाणी मौजूदु न हुजे त नंढनि ॿारनि खे ढिघे वक़्त ताईं स्कूल में विहारणु संदनि सिखिया बदिरां जिस्मानी तकलीफ़ जो सबबु बणिजी सघे थो। ॿारनि जी उमिरि, सिहत, ज़हनी कैफ़ियत ऐं सिखिया जी सलाहियत खे बि तालीमी पॉलिसीअ जो हिसो बणाइणु घुरिजे। हिकु ॿियो उहो सवाल मुशावरत जो आहे। स्कूलनि जी औकात में तब्दीलीअ जहिड़ा फ़ैसिला करण खां अॻु उस्ताद तनज़ीमुनि, वालदेन, तालीमी माहिरनि ऐं स्कूल इंतिज़ाम सां मुशावरत कई वञे त अमली मसला अॻु ई साम्हूं अची सघनि था। पॉलिसी जॾहिं सिर्फ़ आफ़िसुनि में वेही तयारु कई वञे ऐं स्कूलनि जे हक़ीक़ी सूरत हाल खे नज़रअंदाज़ कयो वञे त उन जा नतीजा मसलनि जी सूरत हाल में ज़ाहिर थियण जा इम्कान वधी वञे थो। तालीम खाते जे लाइ ज़रूरी आहे त वक़्तु वधाइण या औकातकार तब्दील करण खां अॻु स्कूलनि जी बुनियादी सहूलियतुनि जो जाइज़ो वठे। जिन इदारनि में पाणी, बिजली, वॉशरूम्स, फर्नीचर ऐं महफ़ूज़ तालीमी माहौल मौजूदु नाहे, उते पहिरियां उहे सहूलियतूं फराहम करणु घुरिजनि। बहितर तालीम जो मयार सिर्फ़ स्कूल में गुज़ारियल कलाकनि सां न पर बहितर माहौल, मयारी तदरीस, बुनियादी सहूलियतुनि ऐं मौसर इंतज़ाम सां हासिलु थींदो आहे। तंहिं करे तालीम खाते खे पंहिंजे नई औकातकार वारे फ़ैसिले ते ॿीहर गौर करणु, लाॻापियल धुरियुनि सां मुशावरत करणु ऐं ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखे पॉलिसी जोड़णु घुरिजे। ॿारनि खे वधीक वक़्तु स्कूल में रखण खां अॻु खेनि सिखण जे लाइ मुनासिब माहौल फराहम करणी तालीम जी हक़ीक़ी बहितरी तरफ़ क़दम हूंदो। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।